सदाचाराय नमः सदाचाराय नमः सर्वस्मै नमः शंभवे नमः महेश्वराय नमः ईश्वराय नमः स्थानवे नमः ईशानाय नमः सहस्राक्षाय नमः सहस्रपदे नमः वरीयसे नमः वरदाय नमः वंद्याय नमः शंकराय नमः परमेश्वराय नमः गंगाधराय नमः शूलधराय नमः परार्थैकप्रयोजकाय नमः सर्वज्ञाय नमः सर्वदेवादये नमः गिरिधन्वने नमः जटाधराय नमः चंद्रापीडाय नमः।

सुषेणाय नमः, सुरशत्रुघ्ने नमः, अमेयाय नमः, अरिष्टमथनाय नमः, मुकुन्दाय नमः, विगतज्वराय नमः, स्वयं ज्योतिषे नमः, अणुज्योतिषे नमः, अचलाय नमः, परमेश्वराय नमः, पिंगलाय नमः, कपिलश्मश्रवे नमः, शास्त्रनेत्राय नमः, त्रयीतनवे नमः, भगाय नमः, विवस्वते नमः, आदित्याय नमः, योगाचाराय नमः।

नमः मखद्वेषिने नमः विष्णुकन्धरपातनाय नमः वीतदोषाय नमः अक्षयगुणाय नमः अन्तकारये नमः पूषदन्तभिदे नमः धुर्झटये नमः खण्डपरशवे नमः सकलाय नमः।

अधिपाय नमः लोकबन्धवे नमः लोकनाथाय नमः कृतज्ञाय नमः कृतभूषणाय नमः अनपायाय नमः अक्षराय नमः शान्ताय नमः सर्वशस्त्रभृताम्बराय नमः तेजोमयाय नमः द्युतिधराय नमः लोकमायाय नमः अग्रण्ये नमः अणवे नमः सुविस्मिताय नमः प्रसन्नात्मने नमः दुर्जयाय नमः दुरतिक्रमाय नमः ज्योतिर्मयाय नमः।

सर्वर्तुपरिवर्तकाय नमः सप्तजिह्वाय नमः सहस्रार्चिषे नमः स्निग्धाय नमः प्रकृतिदक्षिणाय नमः भूतभव्यभवण्

कार्यकोविदाय नमः, वेद्याय नमः, वैद्याय नमः, वियद्गोप्त्रे नमः, सप्तावरमुनीश्वराय नमः, अनुत्तमाय नमः, दुराधर्षाय नमः, मधुराय नमः, प्रियदर्शनाय

0: स इषूहस्तैस्सनीषङ्गिभिर्वशी सज्ञस्रष्टा सयुधयिन्द्रो ओगणेन
1: सज्ञसृष्टजित्सोमपाबाहुषर्ध्युग्रधन्वा प्रतीहिताभिरस्ता।

0: दुस्यवनः प्रोतनाशाला युध्योऽस्माकज्ञसेना अवतु प्रजुत्सु
1: इन्द्र आसान्नेता बृहस्पतिर्दक्षिणा।

0: देवहूर्यज्ञ आचावक्षत् सुम्नहूर्यज्ञ आचावक्षत्
1: यक्षादग्निर्देवो देवाँ आचावक्षत् वाजस्यमाप्रसव उद्ग्राभेनोदग्रभीत्। अथ

0: सुः इति अष्टादशोऽध्यायः।
1: ओम नमः शिवाय। डियर लिसनर्स ऑफ shaivam.org, द नेक्स्ट प्रोग्राम इज स्पिरिचुअल डिस्कोर्स। इन दिस यू आर अबाउट टू लिसन शिवानंद लहरी इन हिंदी, प्रेजेंटेड बाय महामंडलेश्वर स्वामी श्री आत्मानंद गिरिजी महाराज। थैंक यू। ओम नमः शिवाय।
2: ध्यायेह नित्यं महेशं रजत गिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगभरा भीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात्स्तुतममरगणद व्याघ्रकृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्ववंद्यं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं सुकं गौड़पदं महंतं गोविंद योगींद्रमथस्य शिष्यं श्री शंकराचार्य मथस्य पद्म पादं च हस्तामलकं च शिष्यं तंत्रोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मत्पुरुं संततमानतोऽस्मि विशुद्ध ज्ञान देहाय त्रिवेदी दिव्य चक्षुषे श्रेयः प्राप्ति निमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे। ओम शांति शांति।

ओम प्रेमपुरी आश्रम आयोजित कृष्ण कुमार दहिया स्मृति गीता चिंतन माला के अंतर्गत विशेष संत प्रवचन माला कार्यक्रम का आज से आरंभ कर रहे हैं। ये कार्यक्रम विगत 3 वर्षों से लगातार चल रहा है। कभी प्रेमपुरी आश्रम आयोजित संत प्रवचन माला के अंतर्गत, कभी प्रेमपुरी आश्रम आयोजित गीता चिंतन माला के अंतर्गत। इस वर्ष गीता चिंतन माला के अंतर्गत इस कार्यक्रम को ले रहे हैं। आदिगुरु भगवान शंकराचार्य जी की रचना भगवान शिव के प्रति अपनी भावनात्मक भक्ति से ओतप्रोत यह शिवानंद लहरी, जैसे कि इसका नाम है शिवानंद लहर। आजकल चौमासा में समुद्र में लहर चल रहे हैं, तरंग एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा। विशेष करके आजकल के जो आधुनिक युवा युवती उस लहर का बड़ा आनंद ले रहे हैं। हम जैसे बूढ़े तो घबरा जाते हैं, पानी के छींटे से भी हमको खांसी जुकाम अनेक रोग आदि व्याधि आ जाते हैं, इसलिए हम बचना चाहते हैं। लेकिन हम देखते हैं युवा युवती खूब आनंद लेते हैं उसका। हम वृद्धों के लिए प्रेमपुरी आश्रम में ये शिवानंद लहर है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, सौ सौ श्लोकों का ये लहर, ये तरंग, इसका हम मुमुक्षु भगवान के भक्त भरपूर आनंद ले सकते हैं। और इसी उद्देश्य से इसका आरंभ किया गया है। भक्ति में भाव प्रदान होता है, भक्ति में तर्क और बुद्धि का बहुत कम योग उपयोग होता है। भक्ति में भावना से संबंध है, भाव प्रदान है। इसलिए किसी संत ने कहा प्रार्थना भले ही शब्द शून्य हो लेकिन भाव शून्य नहीं होनी चाहिए। प्रार्थना में शब्दों का महत्व बहुत कम है, लेकिन कई बार हम शब्दों का प्रयोग करते हुए भाव से रहित हो जाते हैं, केवल शब्दों के चक्कर में पड़ते रहते हैं। शब्दों के साथ भावना यदि जुड़ी हुई हो तो प्रार्थना सही होता है। तो मुझे लगता है आदिगुरु शंकराचार्य जी ने इस शिवानंद लहरी में शब्दों का प्रयोग तो किया ही है, लेकिन इन शब्दों के साथ उन्होंने अपनी भावना किस तरह प्रस्तुत किया है, ये बात शिवानंद लहरी के प्रसंग से हमें जानने को मिलता है। जैसे कि शिवानंद लहरी में 100 श्लोक हैं, कुछ कुछ श्लोक शिवानंद लहरी के इतने महत्वपूर्ण हैं, वह हमारे हृदय को छू जाते हैं,
विगत 3 साल तक हमने इसकी व्याख्या लगातार करते आ रहे हैं और हमारा लक्ष्य रहेगा कि इस साल इसको पूरा करेंगे। गत वर्ष हम अंतिम प्रवचन के लिए हमने 66वां श्लोक का प्रयोग किया था। नियमानुसार इस साल हम 67वां श्लोक से आरंभ करेंगे, लेकिन इससे पहले 66वें श्लोक का वो निरंतरता बनी रहे, आपको स्मरण में आ जाए तो 66 श्लोक का भाव क्या है और उस भाव से 67वें श्लोक का संबंध क्या है, इसके लिए हम पहले अभ्यास कराएंगे आपको। शंकराचार्य जी ने अनेक प्रकार के छंदों का प्रयोग किया है इस स्तोत्र की रचना में। ये 67वां श्लोक आर्य छंद का प्रयोग किया। बहुविध परितोष बाष्प पूर स्फुर पुलकांकित चारु भोग भूमि चिरपदकांक्षी सेव्यमानां परम सदाशिव भावनां प्रपद्ये। इसको अलग अलग पद का प्रयोग करके इसकी व्याख्या करनी पड़ती है। दूसरा श्लोक है 68वां, अमितमुदमृतम मुहुर्दुहंतिम विमल भवत्पद गोष्ठमा वसंतिम सदय पशुपते सुपुण्य पाकाम मम परिपालय भक्ति धेनु मेका।

पशितुम सुलभ प्रसन्न मूर्ति ही अगणित फलदायक प्रभुर मे जगदधिको हृदिरास से करोस्ति। इन श्लोकों में शंकराचार्य जी ने श्लोकों के द्वारा शंकराचार्य जी ने जो भाव व्यक्त किया है उसकी व्याख्या करते हैं। पिछले साल का अंतिम श्लोक 66वां श्लोक में, हालांकि गत वर्ष हमने इस पर बहुत व्याख्या की, 1.5 घंटे तक इस श्लोक की व्याख्या की थी। क्रीडार्थम सृजसी प्रपंचमखिलम् क्रीडा मृगस्ते जन यत्कर्माचरितम् मया च भवतः प्रीत्यै भवत्येव तत् शम्भो स्वस्य कुतूहलस्य करणम् मत्स्यष्टितम् निश्चितम् तस्मान् मामकरक्षणम् पशुपते कर्तव्यमेव त्वया। परमात्मा अलौकिक पुरुष है, इसके बावजूद भी शंकराचार्य जी जब उनकी स्तुति करते हैं तो मानो कि वो एक लौकिक पुरुष है। लोक व्यवहार में व्यक्ति आनंद के लिए बहुत कुछ करता है, हालांकि तमाम श्रुतियों ने परमात्मा को आनंद स्वरूप कहा है। भगवान शिव स्वयं आनंद स्वरूप है। आनंद जिसका स्वरूप हो उसे आनंदित होने के लिए किसी आलंबन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, समझ गए। मिश्री स्वयं मधुर स्वरूप है, मीठा है, मधुर है, मिश्री को मीठा होने के लिए किसी अन्य का आश्रय लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन जलेबी स्वयं मधुर स्वरूप नहीं है उसके, पंचदशी में विद्यारण्य मुनि जी ने इसका संकेत किया। जलेबी जब बनाया जाता है मैदे को भिजाते हैं, एक दो दिन पहले उसको खमीर बनाते हैं, फिर उसको तेल में पकाते हैं, लेकिन मधुर नहीं होता है, मीठा नहीं होता है। तेल में पका हुआ जलेबी मीठा नहीं होता है, और जलेबी को मीठा करने के लिए मिश्री का यानी चीनी का आश्रय लेना पड़ता है। बेसन का जब पकौड़ा आप पकाते हो तो वह नमकीन नहीं होता है, वो पकौड़े को नमकीन होने के लिए नमक का आश्रय लेना पड़ता है। जलेबी को मधुर होने के लिए चीनी का आश्रय लेना पड़ता है, लेकिन नमक को नमकीन होने के लिए किसका आश्रय लेना पड़ेगा? किसी का आश्रय लेने की जरूरत नहीं है, खुद नमकीन है। चीनी को मधुर होने के लिए किसी का आश्रय लेने की जरूरत नहीं है, चीनी खुद। तुम हम लौकिक पुरुषों को आनंदित होने के लिए

0: अन्य का आश्रय लेना जरूरी है, क्योंकि हम लौकिक पुरुष में वह आनंद स्वरूपता अनुभव में नहीं आ रहा है। हालांकि वेदांत की प्रक्रिया से वो हमारा स्वरूप है, अपना ही स्वरूप होते हुए भी प्रातःकालीन प्रवचन पंचदशी के प्रवचन में आप लोगों ने सुना, प्रतिबंधक के चलते उसका अनुभव नहीं हो पाता। जब तक वो प्रतिबंधक नहीं हटेगा तब तक उसका अनुभव नहीं हो पाएगा। इसलिए हमें अन्य का आश्रय लेना पड़ता है। तो हजार विकल्प हम लोगों ने खोज लिए है। लौकिक पुरुष आनंदित होने के लिए अन्य का आश्रय लेते हैं और उसके लिए अन्य के रूप में हजार विकल्प खोजिए। भगवान शिव को कोई विकल्प खोजने की जरूरत नहीं। लेकिन मानो कि वो हमसे मिल रहे हैं, वो अलौकिक पुरुष होते हुए भी मानो कि वो हमारी तरह लौकिक पुरुष की तरह वो व्यवहार कर रहे हैं। तो जिस तरह लौकिक पुरुष आनंदित होने के लिए क्रीड़ा करता है, खेल खेलता है, और जो खेल खेलता है वह साधन सापेक्ष है, बिना साधन का तो खेल नहीं पाएगा। तो उन अनेक प्रकार के साधनों का निर्माण करता है, उसका निर्माता भी वही है, प्रयोगकर्ता भी वही है और उसका उपभोक्ता भी वही है। शंकराचार्य जी उनको कह रहे, भगवान शिव को कह रहे, हे शिव, संभो या संबोधन है, दो संबोधन यहां शिवजी के लिए शंकराचार्य जी ने प्रयोग किया है। पहला संबोधन है संभो और दूसरा संबोधन है पशुपति। पशुपति संबोधन में पशुपति, शंभु संबोधन में शंभो। क्रीडार्थम सृजसि प्रपंचम अखिलम, अखिलम प्रपंचम, पांच का खेल, पांच वस्तु को उपादान कारण के रूप में लेकर और उसी के पंचीकरण अपंचीकरण आदि के द्वारा समस्त स्थूल और सूक्ष्म पदार्थों की रचना की। अपंजीकृत पंचों से सूक्ष्म जगत की और पंजीकृत पंचों से स्थूल जगत की रचना परमात्मा ने की है। इसीलिए इस जगत का, स्थूल और सूक्ष्म उभय जगत का नाम है प्रपंच। श्री जैसी अखिलम प्रपंचम सृजसि, आपने इसकी रचना की है, आपने इसकी सृष्टि की है, इस प्रपंच को आपने ही बनाया है। किस लिए बनाया है? बनाने का प्रयोजन क्रीडार्थम, मैं इस संसार में खेलूं क्रीडार्थम।
1: ओम नमः शिवाय। डियर लिसनर्स ऑफ शैवम डॉट ऑर्ग, The next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shiva Mahima, presented by Swami Santoshi Mataji. Thank you. Om Namah Shivaya.

सदघन चिदघन आनंदघन कल्याण गुणगण निलय अव्यक्त अविनाशी सर्वेश्वर जगत नियंता जगदाधार प्रभु की असीम अहेतु की कृपा के साथ प्रातःकाल किस पावन बेला में बैठकर भगवान आशुतोष चंद्र मौल्य चंद्र चूड़ चंद्रनाथ सदाशिव का सदैव भगवान शिव को प्रसन्न करने वाले भगवान शिव के पंचाक्षर मंत्र पर विचार कर रहे थे। भगवान का ये पंचाक्षर मंत्र जो बहुत छोटा है, पांच ही अक्षर है। मंत्रों के अक्षरों को लेकर भी बहुत बड़ा एक विवाद करते हैं। ये षडाक्षर है, ये पंचाक्षर है, ये नवाक्षर है, ये द्वादशाक्षर है, ये षोडशाक्षर है। प्रश्न इस बात का नहीं है कि मंत्र में अक्षर कितने हैं, प्रश्न इस बात का है कि ये मंत्र किस ग्रंथ का है, वैदिक है अथवा पौराणिक है, और उसके साथ बहुत से मंत्र होते हैं जो भगवान को प्रसन्न करने वाले सिद्ध मंत्र होते हैं, जिन्हें सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। परंतु भगवान के अनेकानेक नाम हैं। कुछ नाम ऐसे हैं कि जो नाम स्वतः सिद्ध नाम है, जैसे शिव, नारायण, राम, कृष्ण आदि आदि। इन नामों से भगवान का स्मरण करना और कोई भक्त भाव से भगवान का नया नाम भी रख देता है, तो प्रश्न भाव का है। भाव से भगवान के भक्त अनेक नाम कर देते हैं। इस पर मुझे एक बात याद आ रही है कि एक बार एक मां सत्संग में गई हुई थी और सत्संग सुना। प्रायः नियम होता है कि सत्संग के कथा के आरंभ में, विश्राम में भगवान के नाम का स्मरण कर लेते हैं। बोले ये परंपरा इसलिए है कि जो पहले नाम लेते हैं उससे सारे अमंगल अरिष्ट आदि विघ्न जो हमारे शरीर में, कथा में श्रेयांसी बहु विघ्नानी, अर्थात कोई अच्छा काम करने के लिए जाओ तो वहां हमारे पाप विघ्न बनकर आते हैं। उन पापों के समानार्थ, उन विघ्नों के निवारणार्थ भगवान का नाम स्मरण कर लिया जाता है तो दूर हो जाते हैं। और अंत में इसलिए लिया जाता है कि बीच में जो भगवान के नाम स्मरण करने में, जो आपकी महिमा गाने में कोई वाणी लड़खड़ा गई हो, कोई शब्द ऐसा प्रयोग हो गया हो जो अनुचित हो, किसी प्रकार का भी कोई मानसिक दोषादि पाप हो गया हो, तो सर्व पाप प्रणाशनम, सारे पापों के निवारण के लिए भगवान के नाम का स्मरण कर लिया जाता है। इस प्रकार भगवान के नाम को लेने की एक परंपरा है। तो पंडित जी बड़े प्रेम से अंत में कीर्तन करा रहे थे, कंस निषूदन तुम शरणम, देवकी नंदन तुम शरणम। भगवान का कीर्तन करा रहे थे, देवकी नंदन तुम शरणम, कंस निषूदन तुम शरणम, बड़े प्रेम से कीर्तन करा रहे थे। और वो माँ कीर्तन सुन रही थी, तो सुनते सुनते घर गई तो कभी कभी ना जाते जाते कोई अक्षर दिमाग में, कोई संकीर्तन, कोई धुन, कोई वचन ऐसे मस्तिष्क पर छा जाते हैं कि वो आदमी उसी को गुनगुनाता रहता है, मनी मन दोहराता रहता है। तो ये माँ भी घर गई, रसोई बना रही थी, बड़े प्रेम से कंस निधुसूदन तुम शरणम, पर दूसरा वाक्य कैसे बोले, देवकी नंदन, देवकी नंदन तो उसका पति है, पति का नाम है।
तो पहले की औरतें अपने पति का नाम लिया नहीं करती थी। तो वो माँ मन में सोचने लगी कि मैं देवकी नंदन कैसे कहूँ कैसे कहूँ। तो उसने उसका हल निकाला कि पहले माताएं बच्चे के नाम को लेकर के पति को संबोधित करती थी, तो माँ की जो उस महिला थी उसकी लड़की का नाम था चंपो, तो उसने अपना गाना शुरू कर दिया। कंस निषूदन तुम शरणम, चंपू के पापा तुम शरणम, चंपू के पापा तुम। भगवान ने सोचा कि मेरे को कंस निषूदन तो मैंने कई बार सुना, पर चंपू के पापा तो ये नया ही मेरे नाम का नामकरण हुआ है, इसलिए इस नामकरण को भगवान ने सोचा कि मुझे सार्थक करना होगा, नया नाम दिया। तो कहने का मतलब ये है कि उसके पीछे जो उसका भाव था, कुछ नाम ऐसे होते हैं, यूं तो समग्र शब्द राशि याद रखना। तव चकाकिल रस्तुति राम्बिके खिल शब्द, ये जितने शब्द हैं शब्द राशि है, एक एक शब्द मात्र उस परमेश्वर के गुणानुवाद के अतिरिक्त कुछ और नहीं है। ये सकल शब्दों की जो शब्द राशि है, ये सारे शब्द उन्हीं से प्रकट हुए हैं और उन्हीं की स्तुति करते हैं। तव चका किल स्तुति रंभिके, ये सब स्तुति करने वाले, ये सारे ही शब्द उन्हीं के हैं। इसलिए याद रखना कौन सा शब्द ऐसा है जो परमात्मा से न हो, अलग हो। इसलिए इन शब्दों में से कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो अनादि काल से बहुत शाश्वत सिद्ध हैं। उन शाश्वत सिद्धाक्षरों में ये अक्षर है, ये मंत्र है, ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। ऐसा कहकर जो भगवान के इस शिवाक्षर मंत्र का जप करते हैं, चंद्रार्क वैश्वा नरलोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय, यक्षस्वरूपाय जटाधराय पीनाक हस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। यक्षस्वरूपाय जटाधराय, यक्ष के रूप में, केनो उपनिषद में कथा आती है, इंद्रादि देवताओं ने असुरों के ऊपर विजय प्राप्त किया, देवता लोग बड़े प्रसन्न हैं, इंद्र बहुत प्रसन्न हैं, सभी देवता बड़े प्रसन्न हैं कि हमने असुरों के ऊपर जीत प्राप्त की है, और इस जीत का उन्हें अभिमान हो गया है। परंतु भगवान देखते हैं कि मेरे भक्तों को अभिमान हो जाए, ये प्रभु को कोई स्वीकार नहीं है। भगवान को ये स्वीकार नहीं है कि देवता लोग अभिमान करने लगे, मान करने लगे कि ये युद्ध तो हमने जीता, ये हमारी शक्ति से हमने प्राप्त किया। कहते हैं ना बहुत सारे लोग, ये जो कुछ भी है ना, जो कुछ ये देखो, ये बनाया ये बनाया ये बनाया, मैंने ऐसा किया, ये सब मेरा अपना पुरुषार्थ है, मेरे पास तो कुछ नहीं था, परंतु मैंने थोड़ा पुरुषार्थ किया और उससे मैंने ये सब तैयार किया, ये सब मैंने बनाया, मेरी ये मेहनत है। और बहुत से लोग कहते हैं ये तो जो कुछ भी आपको देख रहा है, ये तो महाराज मैंने अपनी बुद्धि से उपार्जन किया, प्राप्त किया। बहुत से लोग अपने पुरुषार्थ पर भरोसा कहते हैं, बहुत से लोग अपनी बुद्धि से अपनी मेहनत से कहते हैं। यदि आप ये समझते हैं कि ये जो कुछ भी है साम्राज्य जो आपने अपने सामने खड़ा किया है, ये मेरे पुरुषार्थ का फल है, मेरी मेहनत का फल है, तो नारायण यदि मेहनत ही करने की बात करते हैं तो मैं समझती हूँ मजदूर से ज्यादा मेहनत और कौन करता है। मजदूर भी तो बहुत मेहनत करता है,
पर उसे मेहनत करने से ही यदि मिलने वाला होता तो मजदूर को मिलता। यदि आप ये कहते हैं कि ये तो मैंने अपनी बुद्धि से ही प्राप्त किया, तो मैं हमेशा कहती हूँ कि बुद्धि में अग्रणीय रहे हैं हमारे हमेशा ब्राह्मण। पर ये ब्राह्मण लोग सारे बुद्धि में तो बहुत आगे हैं, उनको मिल गया होता। याद रखना, यदि ये कहते हैं कि ये मैंने अपने पुरुषार्थ से प्राप्त किया, तो आखिर ये पुरुषार्थ करने वाली शक्ति भी बुद्धि भी तो आखिर आपको किसी ने दी है। तो इसलिए याद रखो कि ये सब जो कुछ भी आपको मिला है, प्राप्त है, न तो ये आपके पुरुषार्थ से मिला, न आपको ये आपकी बुद्धि से मिला, अर्थात ये तो भगवान की कृपा से, अर्थात उन्होंने ही, जिन पर पूर्वजों की कृपा होती है, भगवान की कृपा होती है, उन्हीं को प्राप्त होता है नारायण। इसलिए ये समझना कि बस ये मैंने, देवता लोग सोचने लगे ये हमारी मेहनत से हमने जीत प्राप्त की। जीवन में सफलता, जीवन में सफलता सभी प्राप्त करना चाहते हैं, पर मिलती उन्हीं को है जिन पर भगवान की कृपा होती है। इस सफलता पर देवता लोग अपनी जीत समझने लगे, उन्हें अभिमान हो गया। भगवान ने सोचा कि इनका ये अभिमान दूर करना चाहिए। उनके समक्ष एक यक्ष के रूप में, यक्ष स्वरूपाय जटाधराय, यक्ष के रूप में प्रकट हुए भगवान, और वो कोई और नहीं थे, वो तो सदाशिव ही थे। यक्ष रूपधारी भगवान उनके समक्ष प्रकट हुए और यक्ष को देखकर उनका पता लगाने के लिए कि आखिर ये है कौन, देवराज इंद्र ने सोचा कि किसी को भेजना चाहिए। सबसे पहले वायु को भेजा, कहा कि जाकर पता करो ये कौन है। जैसे यक्ष के पास पहुंचे और उनसे प्रश्न किया कि आप कौन हैं, यक्ष देव बोले कि मैं तुम्हें ये बताऊं, अपना परिचय तुम्हें दूं, उससे पहले मैं तुमसे तुम्हारा परिचय प्राप्त करना चाहता हूं, तुम बताओ कि तुम कौन हो। वायु ने कहा मैं मातृश्रवा वायु हूं। अच्छा, तो तुम्हारा काम क्या है, आप जानना चाहते हैं मेरा काम, मेरा प्रभाव, मेरा बल, मैं चाहूं तो सारी सृष्टि को, सकल सृष्टि को तिनके के समान उड़ा करके समाप्त कर सकता हूं, इतनी मेरी ताकत है। तो यक्षदेव ने थोड़ा सा एक तिनका रखा, कहा कि आप इसे उड़ाइए। वायुदेव ने अपनी पूरी पूरी पूरी ताकत लगा दी, परंतु वो तिनका हिला तक नहीं और वायुदेव मौन हो गए। जब वायु लौट करके नहीं आए तो अग्नि ने कहा कि जाकर मैं पता लेकर आता हूं। जब अग्निदेव पहुंचे, उनसे वही प्रश्न था कि आप कौन हैं, यक्ष ने कहा कि पहले आप उत्तर दीजिए कि आप कौन हैं। उन्होंने कहा मैं जाति वेधा अग्नि हूं, आपका काम क्या है। मेरा काम, मैं आपको बताऊं मेरे में कितनी ताकत है, मैं चाहूं तो सारी सृष्टि को दग्ध कर सकता हूं, जलाकर नष्ट कर सकता हूं क्षण में। यक्षदेव ने वही तिनका रखा और कहा कि इसे जलाइए। वायुदेव ने पूरी ताकत लगाई, परंतु वो तिनका नहीं जला। और इस प्रकार जब वायु भी नहीं लौटे, अग्नि भी नहीं लौटे, इंद्र ने सोचा कि मुझे स्वयं जाकर वहां पता लेकर आना चाहिए। जैसे यक्ष के समक्ष इंद्र गए और इंद्र ने जाकर उनसे पूछना चाहते, इतने में इंद्र को पास आते देखकर यक्ष देव तो अंतर ध्यान हो गए।
यक्ष के अंतर्ध्यान हो जाने पर ठीक उसी स्थान पर एक देवी प्रकट हुई जिनका नाम है अम्बा। अम्बा न हेम्बा देवी प्रकट हुई और जैसे ही माँ भगवती प्रकट हुई और प्रकट होकर यक्ष ने पूछा कि यक्ष ने इंद्र ने पूछा देवी से कि आप बताएं ये कौन है, ये यक्ष कौन है। तब भगवती ने उन्हें तत्व का उपदेश दिया, यक्ष कौन है उनके विषय में बताया। अर्थात मान हो तो ये कौन बताए कि हमारा पिता कौन है, माँ के अतिरिक्त और कौन जान सकती है, कौन बता सकता है कि हमारा पिता कौन है। ये बात तो पिता की जानकारी तो सिर्फ सिर्फ माँ ही दे सकती है। अर्थात परब्रह्म परमात्मा की बोध कराने वाली तो प्रथम माँ होती है नारायण। इसीलिए माँ शक्ति ने ये संपूर्ण जगत जो परमात्मा की शक्ति में ओतप्रोत है, ये जगत न हो तो जगदीश्वर की पहचान कैसे हो। यदि ये प्रकृति न हो तो पुरुष के विषय में कैसे पता चले। यदि सगुण न हो तो निर्गुण के विषय में कौन समझे। सर्गुण से निर्गुण का पता चलता है, साकार से निराकार का पता चलता है, प्रकृति से पुरुष का पता चलता है। यदि प्रकृति न हो तो पुरुष के विषय में कौन बताए। शक्ति न हो तो शक्तिवान के विषय में कैसे पता चले। जिस शक्ति को जिस शक्ति से जिसके प्रभाव से जिसकी ताकत से अग्नि जाति वेदा अग्नि कहला रहे हैं, जिसके ताकत से वायु माति स्रवा वायु कहला रहे हैं, जिसकी ताकत से इंद्र इंद्र कहला रहे हैं, अर्थात कर्मा अधिष्ठात्र देव है मन का देवता इंद्र, अर्थात इंद्र इंद्र कहला रहे हैं, इंद्रियों के जो देवता हैं, अर्थात हमारी पांच कर्मेंद्रिय पांच ज्ञानेंद्रिय, इन इंद्रियां देव स्वरूप हैं और इनके ऊपर शासन करने वाला इंद्र अर्थात मन, जो जिस मन की ताकत को जिस मन क्या है इसके विषय में जानकारी कौन देगा। बोले इंद्र को भगवती ने सर्वप्रथम यक्ष स्वरूपी भगवान का बोध कराया और वो यक्ष के रूप में कोई और नहीं है, वो तो साक्षात भगवान शिव ही है। इसीलिए कहा

0: भगवान यक्ष के स्वरूप में, और यही यक्ष स्वरूप में भगवान किसको प्राप्त हुए? धर्मराज युधिष्ठिर को भी प्राप्त हुए थे। महाभारत में बड़ी सुंदर कथा आती है कि पांडवों को बड़ी जोर की प्यास लगी हुई है। भगवान ने बताया कि कुछ दूर में पानी है, प्यास बुझाने के लिए पानी के पास पहुंचे, यक्षदेव वहां बैठे हुए हैं। पहले तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर दो और उसके बाद तुम्हें जल मिलेगा। बिना मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए तुम यदि जल देखो पियोगे, इतनी आतुरता थी, प्यास इतनी जोर की लगी हुई थी कि यक्ष ने कहा सावधान ठहरो, पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो और तब तुम जल पियो। परंतु नकुल को इतनी जोर की प्यास थी कि यक्ष की बात को सुनी अनसुनी कर दी, और जैसे जल अंजलि से लेकर पी लिया तो मूर्छित होकर गिर गए। इसी तरह से नकुल के साथ हुआ, इसी तरह सहदेव के साथ हुआ, भीम के साथ हुआ, अर्जुन के साथ हुआ। अंत में धर्मराज युधिष्ठिर जब आए, उन्होंने जल जैसे ही पीने के तैयार हुए, देखा कि चार भाई मेरे मूर्छित पड़े हुए हैं, और उसी तरह से उन्हें भी सावधान किया गया, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। धर्मराज सावधान हो गए। बड़ा सुंदर संकेत है ये जल जगत, ये संसार बड़ी जोर की प्यास लगी है, अर्थात पिपासा है, प्यास है संसार में प्राप्त करने की, संसार में प्राप्त करने की चाह है, पाना चाहते हैं। हर कोई प्यासा है, पिपासु है, अर्थात प्यास है संसार में मुझे मिले, ये एक चाह है। पर जिसको तुम चाह रहे हो पहले उसे पहचानो तो सही, जिसे तुम प्राप्त करना चाहते हो वो आखिर है क्या? यक्ष ने कहा कि पहले तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। चार प्रश्न पूछे थे, जिनमें से पहला प्रश्न था कह सुखी, संसार में सुखी कौन है, ये बताओ कि कह सुखम, सुख क्या है, मैं तुमसे ये जानना चाहता। दूसरा प्रश्न ये पूछा था कि आश्चर्यम, आश्चर्य क्या है इस संसार में, आश्चर्य क्या है। पहला प्रश्न था ये बताओ कि सुखी कौन है। दूसरा प्रश्न ये था कि आश्चर्य क्या है। तीसरा प्रश्न था किम वर्द, बात क्या है, मैं ये जानना चाहता हूँ आखिर बात क्या है। इस प्रकार उन्होंने ये, और चौथा प्रश्न पूछा था कि वास्तव में धन क्या है। इस प्रकार के उनके प्रश्न थे, जिनमें से पहला प्रश्न था कि सुखी कौन है, सुख क्या है। हम सुख समझते हैं, ये महाराज युधिष्ठिर ने उत्तर दिया था, सुख वही है, सुखी वही है जिसके ऊपर कोई ऋण न हो। ऋण का अभिप्राय हम यही सोचते हैं कि संसार में जो कर्जदार है, कर्जा किसी से पैसा उधार ले लेना, कोई वस्तु उधार लेना, उसको ही हम एक कर्जा समझते हैं। पर याद रखना हम सबों के ऊपर तीन ऋण है। ऋण
1: Shivaya. You're listening to Shaivam.org radios, 24/7 spiritual channels from Shaivam.org. Om Namah Shivaya.
2: Om Shivaya Namah. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Vaidik Shanti Mantra presented by Swami Sri அரிஹரநந்த சாகர்ஜி மகாராஜ். தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய.
3: स्टीफन हॉकिंस ऐसा कुछ नाम है उनका, तो उन्होंने ये बुक लिखी है और उसमें उन्होंने ये साबित किया है। साबित किया अपने हिसाब से उन्होंने साबित किया कि ये सारा संसार अपने आप बनता है, कहते उनका कर्ता करता कोई नहीं है, कहते ऐसा लिखा उन्होंने, अपने आप बनता है। अब ऐसा एक भी दृष्टांत बताओ, एक भी दृष्टांत ले आओ जो अपने आप बनता हो। हमारे यहां तो आचार्य ने बिल्कुल स्थूल रूप से कहा कि जगताम यदि नो करता कुला लेने विना घट चित्रकारम विना चित्रम सत एव भवेत तदा। देखिए बिना चित्रकार चित्र बन जाता है ऐसा कहीं सुना? संसार में कहीं दृष्टांत है कि अपने आप चित्र हो गया ऐसा? नहीं। क्या ऐसा कोई दृष्टांत ले आइए कुलाल के बिना घट की उत्पत्ति हो गई हो? ही नहीं सकता है। कोई भी कार्य तभी होगा जब उनके उत्पन्न करने वाले के अंदर ज्ञान चिकित्सा और कृति हो, नहीं तो हो ही नहीं सकता। और चेतन से तो हो ही नहीं सकता है। हमारे यहां सांख्य दर्शन है, कपिल प्रणीत, उनका कहना है कि सारा संसार है वो जड़ से बना है, प्रधान से बना है, कहते हैं। वो जो अभी बुक वाले की बात उसको तो एक साइड में रख दीजिए, उसका तो यहां कोई क्लास ही नहीं है। हमारे यहां जो है सांख्य तत्व का जिसमें विचार है, सांख्य दर्शन जिसको कहते हैं, वो सांख्य दर्शन के आचार्य महर्षि कपिल कहते हैं, बड़ा सूक्ष्म विचार किया है उन्होंने। और फिर वो कहते हैं कि सारे संसार की उत्पत्ति जड़ से हुई है, प्रधान से हुई है। आचार्य बादरायण जी ने उनका खंडन कर दिया, इक्षतेर ना शब्दम इत्यादि। जड़ से संसार की उत्पत्ति हो नहीं सकती, चेतन से ही हो सकती है, क्योंकि चेतन है ना वही नाम और रूप दे सकता है। जड़ किसी चीज का नाम नहीं दे सकता है, जड़ है वो किसी चीज को रूप नहीं दे सकता है। और आप लोग इस बात को तो देखते ही है, सारे संसार के अंदर जितने भी पदार्थ है उनका कोई न कोई नाम है। बिना नाम का कोई पदार्थ ले आइए, बच्चे का जन्म होता है तो क्या वो नाम साथ में लेकर के आता है क्या? तो कोई नामकरण कोई जड़ करता है? नहीं, चेतन ही नामकरण करते हैं, ये निश्चित बात है। तो भला बताइए जड़ से कैसे संसार हो सकता है? इसलिए ये निश्चित है, श्रुति वाक्यों से ये सिद्ध है कि सारे संसार की उत्पत्ति ब्रह्म से होती है। ये बात उपनिषद से साबित है, इतना ही नहीं स्थापित है, सिद्ध है। तत्तु समन्वयात, इस सूत्र से ये आचार्य बादरायण जी ने स्थापित किया कि सभी उपनिषद वाक्यों का एकमात्र ब्रह्म में ही पर्यवसान है। और ब्रह्म है सत्यम ज्ञानम अनंतम, सत्य स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है और अनंत आनंद स्वरूप है। ऐसे ये ब्रह्म है वो सर्वत्र है, तो ऐसा जो ब्रह्म है वो औपनिषदम है, उपनिषद के द्वारा ही सिद्ध है। इसलिए सर्वम उपनिषदम ब्रह्म, ये जो संसार है वो सब ब्रह्म है। ब्रह्म एव ब्रह्म सत्ता अतिरिक्त सत्ता शून्य है, ऐसा वो मुमुक्षु को अनुभव होता है। फिर आगे मुमुक्षु आगे जो है प्रार्थना करते हुए तृतीय वाक्य में कहते हैं, अहम ब्रह्म मा निराकुर्याम। ये तृतीय वाक्य बनाया हमने, अहम ब्रह्म मा निराकुर्याम। मुमुक्षु यहां पर प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर से कहते हैं कि मैं ब्रह्म का निराकरण न करूं, यानी कि तिरस्कार न करूं। मैं कभी भी ब्रह्म का तिरस्कार न करूं। अच्छा, ब्रह्म का तिरस्कार क्या हो सकता है? क्या आप कोई ब्रह्म को ऐसे पिंडीकृत करके कहीं फेंक सकते हैं क्या? नहीं। तिरस्कार का अभिप्राय है कि ब्रह्म अतिरिक्त वस्तु अस्ति या नास्ति, इस प्रकार। ब्रह्म अतिरिक्त वस्तु अस्ति इति वा ब्रह्म नास्ति इति वा, ब्रह्म से अतिरिक्त वस्तु है, ब्रह्म अलग है, संसार अलग है, ये मानना क्या ब्रह्म का तिरस्कार है? या ब्रह्म का स्वीकार ही नहीं करना, ब्रह्म नास्ति ये कहना, वो ब्रह्म का तिरस्कार है। देखो, तिरस्कार वो है जो होते हुए भी उनके अस्तित्व को न मानना, वो तिरस्कार है। तो ब्रह्म का तिरस्कार, जैसे हम लोग कहते हैं अरे परमात्मा ब्रह्मा कहीं है ही नहीं, है तो सब यदि है तो दिखना चाहिए ना, किसी को आज तक तो दिखा नहीं। तो लोग चाहते हैं कि हमको ये चक्षुरादि इंद्रियों के द्वारा परमात्मा दिख जाए, किंतु ऐसा कभी भी संभव नहीं है। चक्षुरादि इंद्रियों का विषय ही नहीं है। अवांग मनस गोचर न तत्र चक्षुर गच्छति इत्यादि अनेक श्रुति वाक्य के द्वारा ये निषेध किया गया है कि ब्रह्म से, ये चक्षुरादि इंद्रियों से ब्रह्म का दर्शन संभव नहीं है। और ब्रह्म चक्षुरादि इंद्रियों का विषय इसलिए नहीं है कि सज्जनों, चक्षुरादि इंद्रियों के द्वारा शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये पांच विषयों को ही प्रत्यक्ष किया जा सकता है। चक्षु है वो बड़ी सीमित है, वो केवल रूप का ही दर्शन कर सकती है, शब्द का प्रत्यक्ष वो नहीं कर सकती है। और कान भी सीमित है, उनकी शक्ति भी बड़ी सीमित है, वो केवल शब्द श्रवण कर सकता है कान, किंतु उनको कहो रूप का दर्शन तो कर सकेगा नहीं। पांचों ज्ञानेन्द्रियों की शक्ति बड़ी सीमित है, वो एक एक विषय को ही ग्रहण कर सकती है। और ब्रह्म है वो शब्द रूप भी नहीं, स्पर्श रूप रस गंध रूप नहीं है, तो चक्षुरादि इंद्रियों के द्वारा भला उनका कैसे ज्ञान हो सकता है, बताइए। और ये भी नहीं कि ब्रह्म कोई एक जगह, कोई पिंडीकृत होकर के एक जगह पहाड़ में या कहीं समुद्र में या नदी सरोवर में रह जाए कि वहां पर पैदल चल करके जाया जा सके। और ऐसी कोई वस्तु भी नहीं है कि जिससे उनको हाथ से ग्रहण कर सके। उनका कोई नाम रूप नहीं है कि जिससे उनको वाणी के द्वारा उनको बता सके या त्याग विसर्जन कर सके। इसलिए कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों का वो विषय नहीं है, ठीक है कि नहीं। इसलिए हम लोग ये सोचे, और क्या सामान्य ये जो यहां पर उपनिषद का श्रवण करने आ रहे वो तो कहते हैं कि ठीक, लेकिन जिसने कभी ये सत्संग नहीं किया है, श्रवण नहीं किया है, वो तो कहेंगे कि परमेश्वर तो है ही नहीं, कहते। आजकल लोग यही स्वीकार करने के तैयार नहीं है कि ब्रह्म है कि नहीं है। और हमारे यहां ये कहा गया कि ब्रह्म नास्ति इति यो ब्रूयात, जो ब्रह्म नहीं है ऐसा जो कहते हैं वो सबसे बड़ा संसार में पापी है। ठीक है, हमको समझ में न आए, न दिखे, तो ये थोड़ा है जो चीज हमको नहीं दिखती है वो नहीं होती है, होते हुए भी न देखे हो सकता है हमारे अंदर कोई गड़बड़ी हो। देखिए, किसी की चक्षु विकर्ण हो गई तो उनको रूप दर्शन नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये थोड़ा है कि रूप समाप्त हो गया। अरे रूप समाप्त नहीं हो गया, तुम्हारी इंद्रिय विकर्ण हो गई इसलिए तुमको रूप नहीं दिखता है, इसलिए तुम ये नहीं कह सकते कि रूप समाप्त हो गया। सूर्य के आगे बादल आ जाता है तो हमको सूर्य मंडल नहीं दिखता है, तो ये थोड़ा है कि सूर्यमंडल समाप्त हो गया, तुम्हारी जो आंख है ना वो ओझल हो गई इसलिए सूर्य दर्शन नहीं हो रहा। कनच्छन्न दृष्टि, वो दृष्टि जो है वो बादल से ढक गई, लेकिन हम लोग ये स्वीकार नहीं करते, ऐसे थोड़े ना स्वीकार करेंगे। और हम लोग ये मानते हैं कि अरे सूर्यमंडल ये आच्छादित हो गया, बादल से आच्छादित हो गया। कहां शुद्र बादल और कहां महान हजारों योजन में विस्तृत सूर्यमंडल। क्या एक शुद्र बादल सूर्यमंडल को ढक सकता है क्या? नहीं। देखिए ब्रह्म, ये सारा संसार है वो ब्रह्म का पसारा है, लेकिन हमको यदि ब्रह्म न दिखे तो इसमें ब्रह्म का कोई दोष नहीं, हमारा दोष है। इसलिए हम कभी ये न कहें कि हमको परमात्मा ने नहीं दिखता है, इसलिए नहीं है। देखिए जो उलूक है, उलूक को सूर्य दर्शन नहीं होता है तो उसमें कोई सूर्य का दोष है क्या? नहीं। हमारा नीति शास्त्र में कहा, नोलो कोप्यवलोकते यदि दिवा सूर्यस्य किं दूषणम्। दिन में उलूक को सूर्य दर्शन न हो सके तो इसमें सूर्य का कोई दोष नहीं है। उलूक तो यही कहेंगे कि सूर्य नाम की कोई चीज नहीं है, यदि होती तो मेरे को कभी न कभी तो दिखती। धारा नैव पतन्ति चातक मुखे मेघस्य किं दूषणम्। देखिये जो धारा है बारिश, वो चातक के मुख में यदि न गिरे तो उसमें मेघ का दूषण है। धारा बारिश का कोई दूषण है क्या? बारिश का दोष है क्या? नहीं। वो चातक अपना मुख बंद करके बैठा। पत्रम नैव यदा करीर विटपे दोषो वसंतस्य किम्। देखिए वसंत ऋतु की ये महिमा है। वसंत ऋतु में जो है सभी पेड़ पौधे जो है बड़े पल्लवित हो जाते हैं, और एक करीर नाम का एक वृक्ष है, करीर, जिसमें केवल कांटे ही रहते हैं, पत्ता नहीं होता। अब वसंत ऋतु चल रही है किंतु करीर के वृक्ष पर पत्ते नहीं आते हैं, तो उसमें वसंत ऋतु का दोष है क्या? नहीं, उनका अपना दोष है। तो परमात्मा हमको न दिखे तो उसमें हमारा दोष है। हम ये कभी न कहे कि परमात्मा नहीं है, ऐसा संदेह कभी न करे। ऐसा संदेह या संशय या विपर्य रहेगा तब तक परमात्मा दर्शन नहीं होगा। इसलिए यहां पर यह भावना की गई कि मा ब्रह्म निराकरोद, मा ब्रह्म अहम ब्रह्म मा निराकुरिया, मैं ब्रह्म का कभी भी निराकरण न करूं। ब्रह्म से अतिरिक्त वस्तु है या ब्रह्म नहीं है, ऐसा निराकरण ब्रह्म का मैं तिरस्कार कभी मैं न करूं। एक और पंक्ति ले लो, मां ब्रह्म निराकरोद, ठीक है मैं ब्रह्म का निराकरण न करूं, किंतु ब्रह्म यदि हमारा निराकरण कर दे तो तब भी हम ब्रह्म दर्शन नहीं कर पाएंगे ना। इसलिए फिर आगे ये भी कहा, मां ब्रह्म मां निराकरोद, मां ब्रह्म मां निराकरोद, ऐसा एक वाक्य बनाना। मां का अर्थ है माम, मेरे को, ब्रह्म मां निराकरोद, ब्रह्म मेरा निराकरण न करे, यानी ब्रह्म है वो मेरे को कभी न छोड़े। मां ब्रह्म मां निराकरोद, यानी ब्रह्म से हम प्रार्थना करते हैं स्वस्मान माम वियोजयतु। ये प्रार्थना करे कि हमको ब्रह्म अपने साथ जोड़ ले, ब्रह्म हमको कभी दूर न धकेल दे, यानी कि ब्रह्म के साथ हमारा अभेद हो जाए। कब अभेद होगा? उपनिषद का श्रवण होगा तभी तो, तब तो मसी महावाक्य का श्रवण। और ये कब होगा? जब ये सारी बातें होगी तब। और तत्त्वमसी महावाक्य का श्रवण होते ही अहम ब्रह्मास्मि ऐसा अनुभव पर्यंत ज्ञान हमको हो, ये अभिप्राय। संसारे मां पातयतु, ये कह रहे हैं कि भगवान हमको उठा लीजिए, आपके साथ मिला लीजिए, ये नहीं कि आप हमको धकेल दे और हम संसार में पड़े रहे, ऐसा नहीं। संसारे मां पातयतु, मेरे को संसार में मत डालिए, आपके साथ एक कर दीजिए, ऐसा उपाय करे, ऐसी अनुकूलता कर दे कि मैं आपसे एक हो जाऊं, कभी दूर न रहूं मैं। इतनी बड़ी दिव्य भावना इस शांति मंत्र में छिपी है। और देखो आगे कहते तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मा, ये जो है ना उसको वाक्य बनाए, तदात्मनि निरते धर्मा ते मयि संतु, ये अंतिम वाक्य है, तदात्मनि निरते उपनिषत्सु धर्मा ते मयि संतु, ये कहना। देखो कहते हैं तदात्मनि निरते, अब जो है इस प्रकार की भावना से मुमुक्षु जो है बिल्कुल ब्रह्म में क्या हो गया, निरत हो गया, किस में, तदात्मनि आत्मा में वो निरत हो गया। ब्रह्मात्मनि निरते ब्रह्म में रमण करने योग्य हो गया, ब्रह्म की ओर अभिमुख हो गया। इस प्रकार की भावना के फलस्वरूप क्या हुआ कि जो मुमुक्षु है वो ब्रह्म में निरत हो गया, तो ब्रह्म में प्रेम करने लगा वो, तो ब्रह्म में प्रेम करते हुए क्या करना है, तो मुमुक्षु जो है वो ये अभिलाषा रखते हैं कि ये उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि संतु, तब अब मैं ब्रह्म की ओर अभिमुख हूं, ब्रह्म जिज्ञासु हूं मैं, तो ब्रह्म जिज्ञासु मैं पूर्ण रूप से कब हो सकूंगा, तो कहा जब मेरे अंदर ये उपनिषद के अंदर जो प्रकाशित धर्म है वो मेरे अंदर आए। उपनिषद में ब्रह्म को जानने के लिए जो अधिकारी के लक्षण बताए गए हैं, जो अधिकार चाहिए वो मेरे अंदर आए। तो उपनिषद में अधिकार का जहां विचार किया तो वहां पर कहा गया कि जो विवेक वैराग्य शमदमादि षट संपत्ति और मुमुक्षुत्व, ये चार साधन से जो युक्त होगा वो ये ब्रह्म को जान सकेगा। ब्रह्म की जिज्ञासा ही उनको होगी जो विवेक आदि चार साधन से संपन्न है। तो ये जो है विवेक आदि चार साधन शमदमादि शांत दांत उपरति तितिक्षु श्रद्धा समाहि तो भूत्वा आत्मन्येव आत्मनम पश्येत, ये जो है वो तो धर्म मेरे अंदर आए तो फिर मैं ब्रह्म का अपरोक्ष अनुभव करने में मैं समर्थ हो जाऊं, ते मयि संतु मेरे अंदर आ जाए और मैं साधन चतुष्टय संपन्न हो जाऊं और ये उपनिषद का श्रवण करने में समर्थ हो जाऊं। मनन और निधिध्यासन पूर्वक जब श्रवण होगा तो श्रवण से साक्षात्कार होगा और अहम ब्रह्मा से इस प्रकार का अनुभव तक मैं हो जाऊं और मेरा संसार निवृत्त हो जाए। और अंत में तीन बार शांति शब्द का उच्चारण का अभिप्राय है, आध्यात्मिक आधिदेविक आधिभौतिक, ये तीनों जो है दोषों की निवृत्ति हो और मैं अपने स्वरूप को प्राप्त करूं। तो ये जो है शांति मंत्र के प्रवचन की जो श्रृंखला है वो मैं यही समाप्त करता हूं। परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हम सब लोग जो है परमात्मा में निरत रहे और अपने स्वरूप का अनुभव करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।

0: दैनिक जीवन में इसको बड़ी गहराई के साथ और बड़ी शांति के साथ स्वामी जी ने इन दिनों में हमें समझाया। जैसे हम कोई भी कार्य प्रारंभ करते हैं तो पहले गणेश जी की वंदना करते हैं, गणेश जी से प्रार्थना करते हैं कि हमारा कार्य निर्विघ्न संपन्न हो, हमारा कार्य सफल हो। वैसे ही जैसे हम गणेश जी से प्रार्थना करते हैं, वैसे ही हमारे दैनिक जीवन में वैदिक शांति पाठ का महत्व है, शांति पाठ की आवश्यकता है। स्वामी जी ने बताया, वैदिक शांति पाठ के माध्यम से हम प्रार्थना करते हैं कि जो हम श्रवण करते हैं प्रवचन के माध्यम से, उसको हम कभी भूले नहीं। स्वामी जी के श्री चरणों में प्रणाम। आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, फिर भी आप पधारे हैं, प्रेमपुरी पर आपकी बहुत बड़ी कृपा है। मैं यह कह रहा था कि वैदिक शांति पाठ का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। स्वामी जी ने बताया कि वैदिक शांति पाठ के माध्यम से हम ये प्रार्थना करते हैं कि जो भी हम श्रवण करते हैं प्रवचन के माध्यम से, उसको कभी हम भूले नहीं, हमारी स्मरण शक्ति बढ़े, हमारी याददाश्त बढ़े, और जो कुछ भी हम प्रवचन के माध्यम से, स्वाध्याय के माध्यम से सुनते हैं, वो हमारे जीवन में उतरे, हमारे आचरण में आए। स्वामी जी ने बताया कि हमारी पांच ज्ञानेन्द्रियां, पांच कर्मेन्द्रियां और ग्यारहवा मन, ये स्वस्थ रहे और हमारी इंद्रियां अंतर्मुखी हों और हम अंतर्मुखी होकर आत्मदर्शन कर सकें, आत्मतत्व का दर्शन कर सकें। स्वामी जी ने बताया वैदिक शांति पाठ के माध्यम से हम ये प्रार्थना करते हैं कि संसार रूपी अज्ञान का, मोह का जो वृक्ष है, स्वामी जी ने वृक्ष शब्द का उपयोग किया है कि उस वृक्ष को काटने में हम समर्थ हों। और एक बात यह कही है कि जो कुछ भी है सो वासुदेव ही है, सर्वम खलु इदम ब्रह्म वासुदेव सर्वम, वासुदेव के अलावा इस संसार में कुछ भी नहीं है। इसका आपने स्वर्ण आभूषण, मृतिका और घटक, सूत और कपड़ा, इसके माध्यम से बहुत गहराई में जाकर हमें समझाया है कि जो कुछ भी है सो वासुदेव ही है। मैं आप सबकी ओर से और प्रेमपुरी आश्रम की ओर से स्वामी जी के सचों में वंदना करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि अगले वर्ष भी आप पधारकर हमें धन्य करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री कृष्ण। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। जय श्री कृष्ण।
1: ओम नमः शिवाय। डियर यूजर्स ऑफ shaivam.org, we are very much delighted to let you all know that due to the shower of grace from Almighty Lord Shiva and the continuous support from esteemed users like you, our shaivam.org website had passed 26 successful years of service in the world of Shaivam, and it is all set to sustain the same with lot more new features in the forthcoming years as well. Adding to that, like one more diamond embedded to the golden crown, we are pleased to inform the existence of a new radio, Shiva Tattvam, specifically designed to telecast Shaiva discourses. It's a humble request to you to listen that as well and extend your support. Now you can listen all the Shaiva discourses being scheduled in Shaiva Lahari and Thiruneriya Tamilosi radios in Shiva Tattvam radio only. Thanks for your esteemed support. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Dear listeners of shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Mandukya Upanishad presented by Swamini Sri Nishtanandaji Saraswati. Thank you. Om Namah Shivaya.
0: Narayan, Narayan, Narayan, Narayan. Hum sab पूज्य माता जी के श्री चरणों की वंदना करते हैं। माता जी को हमने कई बार सुना है, आपकी वाणी बहुत प्रभावशाली और अविद्या को दूर करने वाली है। आपका एक एक शब्द, उसमें इतना जोश है, उसमें इतनी प्रेरणा है, वो हमारे जीवन के अज्ञान को दूर

माता जी हमें मांडुक्य उपनिषद पर प्रवचन करेंगी। आप सबसे प्रार्थना है कि माता जी की बात को हम ध्यान से सुने और अपने जीवन में उतारें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुष्पहार द्वारा माता जी का आप सबकी ओर से और प्रेमपुरी आश्रम की ओर से अभिनंदन करता हूँ।

0: नमः हरिः ओम।
1: मांडुक्य उपनिषद तीन प्रस्थान, स्मृति प्रस्थान, मृति प्रस्थान, न्याय प्रस्थान। प्रस्थान याने सिर्फ स्थलांतर नहीं है यहाँ, ये प्रस्थान याने प्रकर्षण, कुछ ऐसा विशिष्ट प्रस्थान है जीवन का। यह हमारी आत्यंतिक और अंगत यात्रा है और ये प्रस्थान कुछ ऐसा है जहाँ जाने से वापिस आना नहीं होता है। यद गत्वा न निवर्तन्ते, ये प्रस्थान है। प्रस्थान ऐसा होना चाहिए स्थूल संबंध में ही, स्थूल संबंध में यानी जब आप साधक अवस्था में श्रवण मनन और निधिध्यासन करते हैं। ये प्रस्थान करने के लिए जैसे आप यहां से दिल्ली प्रस्थान करते हैं, तो प्रस्थान करने के लिए माध्यम क्या है भाई अपने पास? बोले हवाई जहाज है, ट्रेन है, हमारी कार लेके जाएंगे। आध्यात्मिक क्षेत्र में, साधना में परमात्मा की ओर गति करनी है, परमात्मा की ओर प्रस्थान करना है। मुझे जाना कहाँ है? परमात्मा के पास। पाना क्या है? परमात्मा को। पानी क्या है? शांति, संतोष, पूर्णता। तो ये सब क्या है? ये सब परमात्मा के ही पर्याय है। तो कोई दो चार जगह नहीं है, शांति एक बाजू, परमार्थ दूसरी बाजू, ऐसा नहीं है। तो भाई हमारे पास वाहन क्या है? श्रवण मनन और निधिध्यासनात्मक वाहन है। पर ये वाहन बराबर होना चाहिए, पूरा होना चाहिए। वाहन तो मैं आपको दे दूं, वाहन में क्या चाहिए? अगर कार से जाना, मैंने तय कर लिया कि मुझे बाई कार जाना है दिल्ली, तो क्या चाहिए? चार पहिए चाहिए कि नहीं? फोर टायर्स, एक स्टेयरिंग व्हील चाहिए, हाँ, सीट चाहिए, ब्रेक क्लच। मैं आपको ये सब दे देती हूँ, चार टायर दे देती हूँ, न्यू ब्रांड, फिर स्टेयरिंग व्हील दे देती हूँ आपको, बहुत अच्छा भारी वाला, अच्छी वाली सीट दे देती हूँ। तो बोले नहीं, अलग अलग कुछ नहीं चलेगा, पूरी कार असेंबल करके दीजिए तो ही कुछ चलेगा। तो ये सब पांच असेंबल किए हुए चाहिए, तो वो क्या है? सफर शुरू करने से पहले तो वो है ज्ञान के बहिरंग साधन जिसे कहते हैं, ये है विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षुता। देखिए ये साधन जो है वो कभी नहीं छूटने वाले और छूटने भी नहीं चाहिए। हम ऐसा नहीं समझ सकते कि पहला प्रस्थान हो गया तो अभी साधन की जरूर नहीं, दूसरा प्रस्थान हो गया तो साधन की जरूर नहीं, ब्रह्मसूत्र पढ़ने लगे तो साधन की जरूर नहीं। ये सब छूट जाएगा, पर ये साधन तो रहने ही वाला है। तो विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षुता, जैसे मैंने कहा, टायर अकेले नहीं चलेंगे, स्टेयरिंग व्हील अकेला पड़ा हुआ नहीं चलेगा। विवेक, विवेक से आने वाला वैराग्य, विवेक यानी पहले तो तय कर लीजिए, डिसाइड वंस एंड फॉर ऑल, डिसाइड क्या चाहिए, नित्य या अनित्य, टेम्पररी शांति या शाश्वत आत्यंतिक मुक्ति दुख से शाश्वत शांति, क्या चाहिए? और अगर जवाब आया कि भाई नित्य ही चाहिए, हमारी शांति, हमारा आनंद रहना ही चाहिए, सुकून हमेशा ही चाहिए, और वो हमें शांति का पर्याय पता नहीं है, तो शास्त्र में विद्वानों ने जिसे जैसे जाना। देखो हमें कैसे पता लगता है कि शांति कहाँ है? शास्त्र में कोई गुरु ने बताया, कोई संत ने, कोई ऋषि मुनि ने बताया, तभी होता है। तो शांति की हमारी सबसे पहली खोज क्या होती है पता है जीवन में? आप, हम छोटे बच्चे होते हैं तब भी देखना, हम किन बच्चों के साथ कौन सा खेल खेलेंगे? पहले बच्चा जब नीचे उतरता है खेलने के लिए गार्डन में, तो वो सबको देखता है, सबको देखता है, और जो बच्चा जितना मजा ले रहा है जिस गेम में, बच्चा उसी के साथ मिल जाता है। अगर गेंद खेलने में आनंद आता है तो वहां चला जाता है, मिट्टी का घर बनाने में आनंद आता है, देखता है दो तीन बच्चे मिट्टी का घर बना रहे हैं तो वो उसमें जुड़ जाता है। क्यों? मिट्टी का घर देख के आनंद नहीं आ रहा, मिट्टी का घर जो बच्चे बना रहे हैं वो खुश लगते हैं, वो आनंद में लगते हैं, वो इतने मजा ले रहे हैं कि मेरी उपस्थिति का भी वो लोग, मेरी जो उपस्थिति है उसके लिए भी वो बेखबर है, उसकी भी खबर नहीं रखते हैं, मुझे देखने का भी उन्हें फुर्सत नहीं है मुझे देखने से भी। तो ऐसा क्या है? जरूर ये करने से आनंद आ रहा होगा क्योंकि मुझे भी वो देख नहीं रहे हैं, दे आर निग्लेक्टिंग मी। तो ऐसे ही संसार में शांति की प्राप्ति हमारी शास्त्र को देख के नहीं होती है, सिर्फ परमात्मा की मूर्ति को देख के शांति की प्राप्ति की अपेक्षा इच्छा नहीं होती है। मूर्ति देखने से शांति मिलती है, शांति लेने के प्रयास जो है वो मूर्ति से, सिर्फ मूर्ति देखने से नहीं मिलते, सिर्फ पुस्तक पढ़ने से नहीं मिलते। जिसको ये शांति या आनंद उपलब्ध हो गया है वो कोई ऋषि, वो कोई संत व ऐसा कोई भी व्यक्ति जो सदा आनंद में रहता है, सदा शाश्वत आनंद में, सुख में ही रहता है, उनको देख के भी हमें आनंद होता है, हमारी पीड़ा क्षण भर के लिए हम भूल जाते हैं। और जो व्यक्ति हम देखते हैं कि कोई भी अपेक्षा के बिना, कोई भी विशिष्ट व्यक्ति वस्तु या परिस्थिति के बिना, कोई भी विशिष्ट देश और काल की अपेक्षा के बिना, ये तो खुश है। इसे खुश करने के लिए कोई बाह्य आलंबन की जरूरत नहीं है, ये तो भीतर से ही आनंदित है। इतना ही नहीं, हम जब उनके साथ रहते हैं तो हमें भी आनंद आ रहा है। तो भाई क्या है, तो इनके पास कुछ ऐसा है, इन्होंने कुछ ऐसा पा लिया है जिस जो आनंद का स्रोत, आनंद का कारण बन सकता है। और अगर मेरे जैसा ही कोई जिंदा आदमी, कोई मनुष्य आकार आनंदित हो सकता है तो मैं क्यों नहीं। ये हमारी शांति की पहली खोज है। हमारा जीवन यहाँ से शुरू होता है और हम पहुँच जाते हैं संतों के पास। पहुँचने के बाद हम पूछते हैं, फिर पूछना आवश्यक नहीं है, पहुंचना ही पर्याप्त है। फिर जो करना है वो गुरुजन करते ही है। तो गुरुजन सबसे पहला काम क्या करते हैं? सबसे पहला काम गुरुजन शास्त्र में जो जो भी परमात्मा के बारे में लिखा गया है, ज्ञान दिया गया है, उसकी बात शुरू कर देते हैं। आनंद का स्रोत जो है वो आनंद के स्रोत को वो शुरुआत से ही आपको देने लगते हैं। जिसके पास जो होगा वो ही देगा। आप कोई गुरुजनों के पास जाएंगे तो अभी टीवी में आप क्या देखते हैं, 24 घंटे वो स्टॉक्स आता है ना, क्या क्या कहते हैं उसे आप, शेयर बाजार में, वो नहीं बोलने लगेंगे फटाफट। अभी मेमोरी तो उनकी होती है तो मुखपट हो जाएगा, थोड़े नंबर्स तो वो नहीं कहेंगे। कोई दूसरी संसार की बात नहीं, जिसके पास जो भीतर होगा वही बाहर आएगा। तो आनंद का स्रोत ऋषि मुनियों को, गुरुजनों को जिस प्रकार जैसे भी मिला वही उनके मुख से निकलता जाएगा और हमें उनकी वाणी से, उनकी अनुभूति से ये लेते जाना है, ये लेते जाना है। तो एक दिन ऐसा आएगा कि हम भी इतने भर जाएंगे उनके अनुभव से। इसीलिए देखो गुरु, ये जो शास्त्र ज्ञान की प्राप्ति है, अब आपको पता लगेगा आप बहुश्रुत है, सब यहाँ के श्रोता बहुश्रुत है, इसीलिए हमें बहुत आनंद आ रहा है। एक बात आपने सुना ही होगा, ज्ञान कैसे मिलता है भाई, तो बोले श्रुत्या, युक्त्या और अनुभूत्या। सुना है ना ये बात? तो श्रुत्या यानी ये श्रुति का ज्ञान, युक्ति यानी श्रुति के अंदर जो युक्ति होती है मनन चिंतनात्मक, उससे ज्ञान होता है। और तीसरी जो बात है अनुभूतियां, ये अनुभूतियां जो है वो आप संतों के साथ, ऋषि मुनियों के साथ, ज्ञानी जनों को जब आप सुनेंगे तब उनकी अनुभूति वो धीरे धीरे धीरे अंदर डालते रहते हैं। अनुभूति में कुछ वो विशेष प्रयत्न नहीं करते हैं, अनुभूति यानी कुछ चमत्कार नहीं है। अनुभूति यानी क्या, कि जो जो वाक्य वेदांत में, शास्त्र में, उपनिषद में लिखा हुआ है वो मेरे जीवन में किस प्रकार फलीभूत हो, ट्रांसफॉर्म हो, यही कहते हैं। जैसे दूध का एक ग्लास है, दूध में क्या है, तो भाई बहुत सारे विटामिन है, प्रोटीन्स है, कैल्शियम है, तो दिखता है क्या? हाँ, पृथक्करण अंदर है, दिखता है? नहीं, दिखता नहीं है, पर है, ऐसा साइंस बताता है कि है। और जब आप पीते हैं उसे तो अंदर का, भीतर का जो मैकेनिज्म है, शरीर का जो मैकेनिज्म है, वो क्या करता है, हड्डी में कैल्शियम चाहिए तो कैल्शियम अलग करके हड्डी में दे देता है, प्रोटीन्स अलग करके दे देता है, जो जहां जिसकी जरूरत है वहां वहां वो पृथक्करण करके भेज देते हैं। बस इसी प्रकार ये शास्त्र के जो वाक्य है, शास्त्र के जो मंत्र है, वो पृथक्करण करके क्या उनमें से लिया जाता है, अनुभव किसका किया जाता है। सब शब्द अनुभवात्मक नहीं है, शास्त्र में जो शब्द है 90% अनुभव तक पहुंचने के लिए ही है, ये बात ख्याल रखना। नहीं तो क्या हो जाएगा, जो कुछ भी लिखा है उसे आप ऐसा ही सीधा ही अनुभव करने बैठेंगे तो पार नहीं आएगा और हम विक्षिप्त तो ही हो जाएंगे, उससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकेंगे। तो क्या चीज फेंक देनी है, क्या चीज ले लेनी है? अभी इसको ये एक गिलास दूध में कैल्शियम की मात्रा जो हम निकाले ना तो बहुत कम होती है, बहुत ही कम। हमारे काम की तो इतनी बूंदी है, पूरे दूध के ग्लास में एक बूंद भर भी जो मिनरल्स या कुछ भी जो मिल सकता है वो बूंद भर ही है एक ग्लास में। काम का तो इतना ही है, बाकी सब क्या है, वेस्टेज है, वो निकल जाता है। यानी जो भी यहाँ शास्त्र के जितने भी मंत्र है उसमें जो नेक्टर जो है, जो अनुभव है, उसका जो मकरंद जो है, ये अनुभूति है। तो अनुभूति यानी ये मंत्र में अनुभूति आपको क्या होगी, आपको यानी मुझे, साधक तो मैं हूँ और मैं यात्रा पे निकली हूँ। ऐसे ही आप सब यहाँ जितने भी हैं हम बैठे हुए सब सोचे कि ये मेरी यात्रा प्रारंभ हो रही है, मैं परमात्मा के प्रति जा रहा हूँ। कोई ऋषि नहीं गया, कोई संत नहीं गए, कोई उपनिषद के वक्ता या श्रोता की बात नहीं है। अगर कोई उपनिषद का वक्ता है तो ये जो यहाँ से वक्तव्य हो रहा है, अगर कोई उपनिषद का श्रोता है तो वो मैं ही हूँ उपनिषद का श्रोता, तो ही ये श्रोतव्य और वक्तव्य में से जो अनुभव प्रकट होगा वो मुझे कुछ, उससे मेरी कुछ साधना हो सकेगी। तो ये एक बात है, ये तीन बात हो गई, श्रुत्या युत्या अनुभूत्या। एक और बात हमने की, विवेक वैराग्य षट संपत्ति और मुमुक्षुता कायम रहनी चाहिए। ये रहने के बाद अब आपकी जो यात्रा शुरू हो रही है, कौन सी यात्रा है, तो बोले श्रवण मनन और निधिध्यासनात्मक यात्रा है। तो पहली यात्रा हमारी बात शुरू हुई थी प्रस्थान से, अब हम प्रस्थान में जा रहे हैं, अब प्रस्थान शुरू कर रहे हैं। पर एक बात याद रखना, वहां जाके वापस आना नहीं है, तैयारी है तो ही प्रस्थान शुरू करना। किसी में मन रह गया है, हाँ कोई दृश्य में कोई रूप की वासना रह गई है तो प्रस्थान मत करना, रुक जाना और विश्लेषण करना कि ये रूप प्राप्त कर लूं या जाने दूं, छोड़ दूं। रूप का भी जो कारण है, रूप का भी जो रूप है, चक्षु उसे प्राप्त में कर लूं, सोच लेना, विवेक विचार कर लेना। जल्दबाजी नहीं है, गाड़ियां तो बहुत छूटती है, गाड़ी रुक गई है क्या, अभी तो ज्यादा गाड़ी ज्यादा ट्रेन निकाल दी है, तो चिंता मत करना, रुक जाना। पर अगर यात्रा शुरू कर भी दी, गलती से सब जा रहे हैं इसलिए भी मैं जा रही हूँ, ऐसे भी धक्के धक्के में चढ़ गए, अभी प्लेटफॉर्म पे क्या होता है, बहुत गर्दी होती है तो एक धक्के में चढ़ जाते हैं, तो गलत ट्रेन में गलती से चढ़ गए, यात्रा 5 मिनट के बाद वाली ट्रेन में करनी थी और गलती से आगे की ट्रेन में चढ़ भी गए, तो अब सोच लेना कि अगर चढ़ ही गए हैं, आप गाड़ी में चढ़ गए हैं अभी तो चढ़ ही गए हैं, तो अब वो सब पीछे की वासना जो है उसे आप छोड़ ही देना। तो वो कौन भुगतेगा उसका क्या होगा, वो कौन भुगतेगा उसका क्या होगा, उसका विचार जो है वो परमात्मा के ऊपर छोड़ दो, वो उसे ही करने दो। क्यों खामखा हम देख के हमारी आंख बिगाड़े, हम ज्यादा श्रवण ज्यादा संसार को सुन के हम क्यों ज्यादा प्रपंची हो? वो जो भी कुछ है उसका जो कारण परमात्मा है उसे करने दो। कहने का तात्पर्य इतना ही है कि ये जो प्रस्थान हमने शुरू किया है तो वापस आना यहाँ नहीं है, तो वापस नहीं आना है। अगर ये प्रस्थान जो है परमात्मा के प्रति है तो मिलेगा क्या, मिलेगा क्या, तो पूर्ण शांति, शाश्वत शांति, आध्यात्मिक आदि भौतिक और आदि दैविक जो तीनों ताप जो है, तीनों ताप से मुक्ति जो है, वो मुक्ति का आनंद हमें शाश्वत अभी इसी समय प्राप्त होगा अगर ये प्रस्थान किया दो। तो पहला प्रस्थान स्मृति प्रस्थान है, यानी श्रीमद् भगवद गीता का प्रस्थान। दूसरा जो प्रस्थान है ये श्रुति प्रस्थान है, ये श्रुति प्रस्थान में हम अब प्रवेश करने वाले हैं। तो मांडुक्य उपनिषद जो है वो अथर्व वेद अंतर्गत है, उसमें मंत्र विभाग होता है, ब्राह्मण विभाग होता है, आरण्यक विभाग होता है, संहिता विभाग होता है। तो यहाँ उपनिषद के अथर्व वेद के ब्राह्मण विभाग के अंतर्गत ये मांडुक्य उपनिषद है। खूब ही संक्षिप्त जो काया जो है वो बड़ी छोटी है इसकी, सिर्फ 12 मंत्र का उपनिषद है। पर ये 12 मंत्र के उपनिषद में बहुत ही गूढ़ रहस्य दिए गए हैं। जैसे आपको टेलीग्राम करना है, अर्जेंट कुछ भी मैसेज भेजना है, आपके घर बहुत सारे पोस्ट में लेटर्स आते हैं, सबसे पहले आप किसे खोलते हैं? कोई आपका परम मित्र है, उसने लंबा 5 पेपर का लेटर लिखा है और वो आपका परम मित्र है, बहुत स्नेही है, तो उसका 5 पन्ने का बुकलेट जैसा लेटर पढ़ेंगे? या पहले आप क्या देखिए, आप जरा याद कीजिए, जब भी पोस्ट की इतनी 5-6 कागज में आपके हाथ में अगर थमा दूं, तो पहले हम क्या करते हैं? देखिए, कभी भी कोई भी मुझे ऐसा नहीं कहेगा कि पहला लेटर देखेंगे, आराम से फोड़ेंगे, फिर करेंगे। पहले आप 5 लेटर देख लेंगे कि नहीं, कि क्या क्या है, था ये होता ही है। अब ना कहेंगे तो उसका कोई मतलब ही नहीं है, होता ही है। क्या ये अनकॉन्शियसली हो जाता है? हाँ, मन क्या करता है, मन पहले प्रायोरिटी देने लगता है, ये मन की आदत है। पर हो क्या गया है, मन की जो आदत जो है प्रायोरिटी देने की, उसकी प्रायोरिटी देने की जो कक्षा जो है वो उलट सुलट हो गई है। प्रायोरिटी जिसे अंतिम देनी है, ये आध्यात्मिक साधना की अवस्था की बात करती हूँ, उसकी प्रायोरिटी पहली आ गई है। जैसे आप लेटर्स देखते हैं तो प्रायोरिटी किसको देते हैं? भाई टेलीग्राम को, शॉर्ट लेटर्स को, अर्जेंट लेटर्स को। अर्जेंट लिखा हुआ होता है और अर्जेंट लेटर में क्या हुआ होता है? सिर्फ काम की ही बात कही जाती है, फिर आगे पीछे कुछ नहीं। वो लेटर की शुरुआत ऐसे नहीं होती है, केम छो, कैसे है, कुशल हो, ऐसी बातें यहाँ चलती नहीं है। ठीक है, यहाँ तो सीधी बात कर दी, भाई ये है, ये करना है, तुम्हें यहाँ जाना है, ये करना है, बात खत्म हो गई, यहाँ इधर उधर की बातें नहीं है। तो इसका रूप देख के, वो लेटर का रूप देख के आप क्या है, आप सावधान हो जाते हैं और तत्क्षण और सब कुछ जो आप वो टाइम पे कर रहे होते हैं, कोई भी भोग, शब्द स्पर्श रूप रंग के जो भी भोग कर रहे होते हैं, तत्क्षण तो वो रुक जाता है कि नहीं? कि भोग भी करते हैं, टीवी भी देखते हैं और टेलीग्राम भी पढ़ते हैं? नहीं नहीं, टेलीग्राम क्या ऐसे पढ़ा जाता है, सब भोग अपने आप भोग छोड़ने के लिए क्या करते हैं? कोई कर्म किया, इच्छा की भोग छोड़ने की? नहीं, क्या हुआ, अपने आप छूट गया, बस ऐसे ही। जब ये श्रुति प्रस्थान शुरू हो जाता है, यहां से एक स्टेटमेंट आता है, उदाहरण के मिसाल पर, ओम इति एतत् अक्षरम इदगम सर्वम, ये पहला स्टेटमेंट आ गया। ओहो, यहां उपनिषद सीधा ही हमें बता रहे हैं, ओम ओम है और ये इति, बस बात खत्म हो गई। और ये ओम क्या है? तो बोले एतद् ओम इति कह के क्या कह दिया कि यही, बस यही है, पूर्ण है। अब जो है बात, वो उसकी बात मैं कर रहा हूं। उपनिषद ने सीधी ये बात कर दी। तो जब उपनिषद कहते हैं कि ओम ही सब कुछ है, ओम ही सब कुछ है, तो अभी जितनी भी यहां बैठे बैठे भी हमारे मन में कुछ भी विचार अगर आते होंगे, व्यवहार संबंधी, कोई व्यक्ति संबंधी, कोई काम छूट गया है उसके संबंधी, सुबह मोबाइल पे बात की थी पर लाइन कट गई, उसके संबंधी किसका होगा, क्या होगा, तो तत्क्षण ये सब विचार अपने आप मिट जाते हैं। ये उपनिषद के मंत्र की बहुत बाह्य शक्ति है, ये तो बाई प्रोडक्ट है, ये तो कुछ भी नहीं है, ऐसी शक्ति है। बाकी किसी की भी हिम्मत है कि हमें हमारे भोग से छुटकारा दिया जाए? किसी की भी हिम्मत है कि हमारे भोग रुकवा सके? कोई किसी को आप जाके कह सकते हैं अगर, अरे आप ये भोग मत करो, ये मत खाओ, ये मत देखो, इसे स्पर्श मत करो? नहीं, आप किसी के भी भोग अगर स्थूलतया शारीरिक व्यवहारिक दृष्टि से आप रोक भी दिए ना उसको, तो मन से आप रोक सकेंगे क्या साहब? मन से जो उनका स्वैर विहार चलेगा, और जब शारीरिक भोग आप रोक देंगे तो मन से जो विहार चलेगा भोग का वो ज्यादा होगा, उसे आप रोक सकते हैं? हिम्मत है तो रोक दीजिए। आप पे अगर ताकत है, कोई कहेगा कि बाह्य भोग तो मेरा आपने रोक लिया, भीतर का भोग आप रोक दीजिए, तो बोले हम में वो शक्ति नहीं है, वो मंत्र की शक्ति उपनिषद में है, ये शास्त्र में है। क्या है? ओम इति कह दिया तो अब हम सब छोड़ के एक क्षण के लिए तो विचार किया कि भाई ये सब कुछ में ये ओम कहां से आया। आत्मा बोले होते तो चलो ठीक है कि कोई आत्मा जैसा है जो हमारा सुना हुआ है और हम उसको परमात्मा मान सकते हैं, हाँ ये रेडी। परमात्मा बोले तो मान सकते हैं कि परमात्मा ही सब कुछ है, पर हम अगर यहां से कहेंगे कि भाई परमात्मा इति एवेदम सर्वम, तो क्या रूटीन में चल रहा है वो तो है ही, तो चौंक नहीं जाएंगे आप रुक नहीं जाएंगे। और यहां व्यवस्था क्या की गई है, क्षण क्षण में, शब्द शब्द में, अक्षर अक्षर आपको रोकना चाहता है, बस इतना समझ लीजिए, प्रयोजन इतना ही है। और जब इतना प्रयोजन हमने किसी का हार्द नाप लिया ना, देखिए कभी घर में बैठे होते हैं, कुछ वडील होते हैं, वो भी बैठे हैं साथ में फैमिली मेंबर्स, और अगर ऐसी कुछ टॉपिक निकला, ऐसी कुछ बात निकली, और वो जो घर का मुखी जो होता है वो अगर कुछ कमेंट कर दे या ऐसे कुछ देख ले, तो वो बात तत्क्षण रुक जाती है। क्या हुआ, वो इंटेंशन नाप लिया बच्चों ने कि भाई अभी इसकी इच्छा नहीं है कि ये बात की जाए, हम क्या करते हैं तत्क्षण वो बदल देते हैं। हम हमारे गुरुजनों के साथ बैठे हैं, कोई ऐसी बात निकली, कोई ऐसे विषय पर चर्चा निकली, और वो चर्चा रुकवा देनी है, गुरु अगर बोलते बंद हो जाए या कुछ इशारा कर दे कि अलम अलम ऐसा ही कह दे, तो हम क्या कहते हैं तत्क्षण हम रुक ही जाते हैं। बस यही जो है, ये क्या कहते हैं, हम उसको उन्हें रिस्पेक्ट देते हैं। और क्या है कि छोटे से इशारे में हम समझ जाते हैं कि ये बात को अभी बंद करनी है, ये कर्म अभी बंद करना है, बस ये छोटा सा इशारा है, ठीक है। और ये जो छोटा इशारा है उसे समझ लेना हमारे सबकी फर्ज है, इतनी तो रिस्पेक्ट देनी ही चाहिए। ये बुक सर पे रख के 24 घंटा षोडश उपचार की पूजा करेंगे तो भी प्रसन्नता परमात्मा को नहीं मिलेगी। प्रसन्नता कब मिलेगी, जब उसके भीतर के मंत्र मुझे क्या कहना चाहते हैं, मेरे जीवन में क्या क्या परिवर्तन अपेक्षित है, ये वाक्य से, ये शब्द से, ये अक्षर से, अगर इतना आपने पहचान लिया, कोई जिंदगी में भी कभी पूजा क्या कुंकू भी हाथ में नहीं लगाया होता होगा, तो भी आप सब पूजा आपने कर ली अगर आपने इसे रिक्वेस्ट। और आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि उपनिषद लेके बैठे हैं, श्रुति का प्रस्थान है, और श्रुति का जब वक्तव्य दिया जाता है तब ऐसा कहा जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि पूजा का विरोध है, इसका मतलब ये नहीं है कि कुंकू चंदन नहीं करना है, पर ये जो विचार जो है, ये जो विपरीत विचार भी आने लगे कि ये क्या सब नहीं करना है, वो विचार की भी अपेक्षा यहाँ नहीं रखता है, जो हम कहते हैं वही सुनना है, दैट्स ऑल। और ये जब कोई और हमारे ऊपर कोई हावी हो जाता है, कोई सिर पे चढ़ जाता है, जिसका बले न जबरदस्ती से हम मानने लगते हैं, कोई खींच लेता है, तो वो हमसे बड़ा होगा या छोटा, इतना मुझे बता दीजिए। हमारे ऑफिस के कर्मचारी या जो हमारा काम पूरे दिन करते रहते हैं, कोई ना कोई तरह जिससे हम काम करवाते हैं, वो हमारे सिर पे चढ़ सकता है क्या? चढ़ सकता है, पर एक ही बार। हाँ, फिर आप क्या करेंगे, उसे आप दूर कर देंगे या समझा देंगे कि दूसरा दोबारा ऐसा नहीं करना, हाँ ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमारे सिर पे कौन चढ़ सकता है, कौन हम पे हावी हो सकता है, कौन हमारे पास कुछ करवा सकता है जो हमसे बड़ा होगा? तो भाई ये उपनिषद जो है, ये जो मंत्र जो है, वो परमात्मा के संबंधी ही है, और परमात्मा निश्चित बड़ा है। जब तक वो परमात्मा के पूर्ण रूप को हम नहीं जान लेते, निश्चित वो परमात्मा हमसे बड़ा है। और ये कुछ ऐसा लगता है, देखिए, जिससे हम आकर्षित होते हैं, जो हम पे हावी होता है, हमारी बुद्धि को ग्रह लेता है, बंद कर देता है, और जैसे ये उपनिषद की बुद्धि, जैसे ये उपनिषद के ऋषि की इच्छा है, ऐसे ही हमारा मन सोचने लगता है, तो समझ लेना कि ये कोई मुझसे ऊपर है और ये कोई व्यक्ति नहीं है। देखिए, यह कोई मौलिक नहीं है, यह कोई शरीरदारी नहीं बोल रहा है। ओहो, उपनिषद के मंत्र कोई शरीर नहीं है, ओम का शरीर क्या, ओम के रूप क्या है, रंग क्या है, आकार क्या है, ओहो हो कुछ भी नहीं है, तो ये सब क्या हो गए एट्रीब्यूट्स, ये तो एट्रीब्यूट आत्मा के हो गए भाई। यत्तद् अदृश्यम अग्राह्यम अगोत्रम अवर्णनम, ये तो वो अक्षर जो है जो परमात्मा है उसी की अभिव्यक्ति हो गई। ओहो, तो याने ये जो अक्षर है, ये जो परमात्मा है, कोई व्यक्ति विशिष्ट नहीं है और वो मुझ पे हावी हो रहा है, तो निश्चित ये परमात्मा ही है। और अनुभूति कहाँ होगी, ये जो हमारी बुद्धि रुक जाती है ना, सोच नहीं सकते। अब ये ओमकार के बारे में अभी तो बात भी शुरू नहीं हुई और हमारी सोच रुक गई है। ये व्यवहार संबंधी बुद्धि जो हम लेके आए हैं वो काम नहीं लगती। जो भी डिग्री हम महाविद्यालय से लेके आए हैं, वो जितना हम पढ़े हुए हैं वो सब जुटा देते हैं ये समझने के लिए, तो जवाब ना आता है। हाँ, ये भी छूट जाती है, ये भी रुक जाती है। वो परमात्मा इस प्रकार मुझे बांध लेता है तो मेरे अनुभव में ये कैसे आता है, देखिए ये जो शब्द जो है, शब्द के द्वारा परमात्मा हमारे कानों में गए श्रवणात्मक, के ओम जैसा कुछ है, परमात्मा जैसा कुछ है। और जब हमारी बुद्धि इसके बारे में कोई भी प्रकार के विचार नहीं कर सकती, तब आपको जो फीलिंग आता है ना, फीलिंग क्या है, अभी अभी यही क्षण पे आपको क्या लग रहा है, आप भीतर से विचार कीजिए, तो आप में से सबका जवाब आएगा कि हमें थोड़ा आश्चर्य लग रहा है। थोड़ा आश्चर्य एटले एक आश्चर्य यानी थोड़ा क्वेश्चन मार्क लग रहा है, ये होता क्या है, उपनिषद कहना क्या चाहते हैं, ये किसका वर्णन हो रहा है, ये प्रश्न हो रहा है, ये आश्चर्य हो रहा है।
2: ओम नमः शिवाय।
3: You are listening to Shaivam.org Radio, the 24/7 spiritual channel from Shaivam.org.
2: Om Namah Shivaya.

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
0: ओम नमः शिवाय।

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
2: सैन्दुक्षिता नित्रेणी अग्निं वो वृदान्ता।

ओम नमः शिवाय। डियर लिसनर्स ऑफ शैवम.org, नाउ वी आर लिसनिंग टू केदीचनाद सुप्रभातम, प्रेजेंटेड बाय श्री गायत्री वेंकटराघवन। थैंक यू। ओम नमः शिवाय।

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
2: ओम नमः शिवाय। डियर लिसनर्स ऑफ शैवम.org, द नेक्स्ट प्रोग्राम इज स्पिरिचुअल डिस्कोर्स। The title is Saddarshanam Satsanga, presented by Sri Nochu Venkatraman. Thank you. Om Namah Shivaya.
3: Om Namah Paramarshibhyo. Namah Paramarshibhyam. Harihi Om. Yasyantan Adimadhyam. नहि करचरणं नाम गोत्रं न सूत्रं नो जातिर्नैव वर्णा न भवति पुरुषो नानपुंसं न च स्त्री नाकारं नैव कारं नहि जनिमरणं नास्ति पुण्यं न पापं तत्त्वं नो तत्त्वमेकं सहजसमरसं सद्गुरुं तं नमामि सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। मौनव्याख्याप्रकटितपरब्रह्मतत्त्वम् युवानम् वर्षिष्ठान्ते वसद्दृशिगणैरावृतम् ब्रह्मनिष्ठैः आचार्येन्द्रम् करकलितचन्मुद्रमानन्दमूर्तिम्।

आदिगुरु भगवान शंकराचार्य विरचित शिव भक्ति से युक्त शिवानंद लहरी इस स्तोत्र के आधार पर सायंकालिक 10 दिवसीय विशेष संत प्रवचन माला के क्रम में आज अंतिम दिन यानी 10वां दिन अभ्यास के लिए शिवानंद लहरी अंतर्गत 66वां श्लोक 66 100 श्लोक का ये शिवानंद लहरी है। 3 वर्षों में हम 66 श्लोक तक पहुंच गए हैं। क्रीडार्थम सृजसि प्रपंचमखिलम् क्रीडा मृगास्ते जना यत्कर्मा चरितं मया च भवतः

कर्तव्यमेव त्वया। शिवानंद लहरी में कुछ श्लोक ऐसे भाव गर्भित हैं, बहुत महत्वपूर्ण हैं, भक्तों द्वारा, मुमुक्षुओं द्वारा, शिव भक्तों के द्वारा हमेशा गुनगुनाते रहें, ऐसा भाव है इन श्लोकों में। इससे पहले हमने बताया था, एको बारि जवान दवा छिति न वो, उस श्लोक में जो भाव था वो भाव ये था कि मेरे अंदर अनादिकाल से मूला विद्या यानी अज्ञान रह रही है। परम प्रकाश स्वरूप, प्रचंड प्रकाश स्वरूप आपके रहते हुए वो अविद्या रह कैसे गई? भगवान शिव से कहा गया था कि महाराज, इसका मतलब है उस अविद्या को नाश करने की आपकी इच्छा नहीं है। इसका यही निष्कर्ष निकला कि मेरे ऊपर आपकी कृपा नहीं हुई है, आप यही चाहते हो। जिसके हृदय में मैं रह रहा हूं उसको मेरा साक्षात्कार न होवे, यही चाहते हो ना? यदि आप संकल्प कर लो, जिसके हृदय में मैं रह रहा हूं।

न जाने और कब तक ये मूर्खता, ये विडंबना मेरे जीवन में बना रहेगा। इसलिए भगवान, अब विलंब मत करो, साक्षात प्रसन्न हो भवा। बहुत हो गया है, इसी के चलते न जाने कितने बार कई योनियों में मैं भटकता रहा हूं। हालांकि जिस योनि में भी मैं गया हूं, आपने मेरा परित्याग नहीं किया है। हालांकि मैं ये भी जानता हूं, मैं जिस भी योनि में गया हूं, आपने मेरा परित्याग नहीं किया है। इतना अनुग्रह तो आपका मेरे ऊपर है, लेकिन आप ने मेरा परित्याग नहीं किया, लेकिन मैं आपके साक्षात्कार नहीं कर पा रहा हूं। अब मुझे आपका साक्षात्कार करना है, इसलिए कि आपके साक्षात्कार करना है, क्योंकि एक बार आपका दर्शन हो जाए। कुंती ने कहा भागवत में, भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। हे भगवान, आपका दर्शन जिसने कर लिया, एक बार भी जिसने आपका दर्शन कर लिया, उसको फिर भव का दर्शन करने को करना नहीं पड़ेगा। भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। जिसने आपका दर्शन कर लिया, उसको संसार का दर्शन करना नहीं पड़ेगा। इसी तरह आपका साक्षात्कार मुझे हो जाए, तो फिर मुझे फिर ये 84 योनियों में भटकना नहीं पड़ेगा। हालांकि मैं जानता हूं, मैं जिस योनि में भी जाऊं, आप मेरा तिरस्कार तो नहीं करेंगे, लेकिन कब तक योनियों में भटकता रहूंगा। उसी भाव को यहां अब इन श्लोकों के द्वारा, इस श्लोक के द्वारा शंकराचार्य जी प्रकट करते हैं। क्रीडार्थम सृजसी प्रपंचमखिलम्, क्रीडा मृगास्ते जना, यत्कर्मा चरितं मया च भवत, प्रीत्यै भवत्येव ततो। शम्भो स्वस्य कुतूहलस्य करणम्, मच्चष्टितं निश्चितं, तस्मान्मामकरक्षणं पशुपते। कर्तव्यमेव त्वया, पशुपते, ये संबोधन है। हे पशुपति, क्रीडार्थम सृजसी प्रपंचमखिलम्, सारे प्रपंचों को आपने अकेले रमण करने की संभावना न होने पर, अकेले खेलने की संभावना न होने पर, सहक्रीड़ा के हेतु से आपने सारे प्रपंचों की रचना की है। बच्चे लोग जब अकेले, जब बच्चों को खेलने की इच्छा होती है, तो घर से बाहर निकलते हैं और साथी खोजने चले जाते हैं, और ये व्यवहार में हमने देखा है, बच्चे लोग जितनी जल्दी मित्रता कर लेते हैं, हम लोग उतनी जल्दी मित्रता नहीं कर पाते। हम लोग तो बहुत विचार करते हैं,

0: इससे बात करें कि न करें, इससे मित्रता बनाएं कि न बनाएं, इसके नजदीकता बढ़ाएं कि न बढ़ाएं, पता नहीं कैसा है, क्या कहेगा, क्यों कहेगा, क्या करेगा, कैसा व्यक्ति है, मन में हजार बात सोचते हैं। बच्चे ये सब नहीं सोचते। बच्चों को तो अपने बराबर के कोई देख लिया तो बस उससे तुरंत जाकर मित्रता, क्योंकि उनमें मन में ये सब बात नहीं खेलती है, ये सारी बातें स्फुरित नहीं होती हो, उनको मित्र चाहिए, साथी चाहिए, तुरंत मित्रता कर लेंगे वो। लेकिन जितनी जल्दी मित्रता करते हैं उतनी जल्दी झगड़ा भी करते हैं, और जितनी जगड़ी झगड़ा कर लेते हैं उतनी जल्दी फिर साम्यता भी हो जाती है उनमें, उनकी मित्रता और उनकी जो झगड़ा उन बच्चों की एक साहजिक है। साहजिक है माने कृत्रिम नहीं है, बनावटी नहीं है, उनका वो सहज है, झगड़ा सहज है, मित्रता सहज है, रोना सहज है, हंसना सहज है, झगड़ना सहज है, मित्रता सहज है, क्योंकि उनका सारा जीवन ही सहज है। इसलिए शायद सहज है, इसलिए वो ज्यादा खेल पाते हैं, और हमारा जीवन बहुत जटिल बनता जा रहा है। उस जटिलता का कारण अपना ईगो है, अंदर अंदर की जो अहमता है वो जटिल बना रही है जीवन को, और शायद उसी अहम के चलते हम तुरंत मित्रता नहीं कर पाते हैं, और शायद उसी अहंकार के चलते तुरंत झगड़ा हो जाता है, और उसी अहंकार के चलते वो झगड़ा बहुत लंबा चलता है। उस मन की जो मटावट है, वो घृणा है, वो नफरत है, घंटा दो घंटे में समाप्त नहीं होता। मैं ऐसे व्यक्तियों को जानता हूं, दसों वर्ष हो चुका है फिर भी वो अंदर की गिल्टी, वो गांठ खुली नहीं है, दसों वर्ष हो चुका है, छोटी सी किसी बात पर कुछ ठनी, कुछ कहा सुनी हुई, आज तक वो ग्रंथि हृदय से खुल नहीं पा रही है। ये अहम के अलावा और कुछ भी नहीं है ये समस्या, इसलिए जीवन को साहजिक बनाना बहुत जरूरी है। नेचुरल बनाओ, सहज बनाओ, आदिगुरु शंकराचार्य जी सृष्टि का प्रयोजन बता रहे हैं। हे महाराज, हे पशुपति, संबोधन हे पशुपति, आपने ये सृष्टि, ये जगत रचना, ये प्रपंचों की रचना, चर और अचर जगत की रचना क्यों किया? मुझे लगता है ये बात शंकराचार्य जी श्रुति के आधार पर कह रहे हैं, प्रमाण के आधार पर कह रहे हैं, कल्पना नहीं कर रहे हैं। उपनिषदों में ये चर्चा है, इसीलिए शंकराचार्य जी कह रहे हैं, क्योंकि आप सजातीय विजातीय स्वगत भेद त्रय शून्य एक अखंड सत्ता के रूप में रह रहे थे, तो आपको अकेले रहने में मजा नहीं आया। हाँ, रह रहे थे लेकिन अकेले रहने में मजा नहीं आया, देखो आनंद आना दूसरी चीज है, मजा आना दूसरी चीज है। आनंद आना दूसरी चीज है, मजा आना दूसरी चीज है। आनंद अपने आप आता है क्योंकि अपना स्वरूप ही है, इसलिए आनंद कहीं बाहर से नहीं आता। मजा बाहर के किसी संबंध से आता है। बढ़िया बढ़िया मिर्ची के गरम गरम पकौड़े खाओ चटनी के साथ, मजा आवी गए हो ले जी, शू मजा आवी गए हो। मोड़ो जली ने शू शू करे छे अने पछी कहे छे मजा आवी गए हो। मुख के जलन में भी मजा आ रहा है, ये भी जान रहा है कि मुख के जलन के बाद पेट जलेगा, पेट जलने के बाद पता नहीं क्या क्या जलेगा, फिर भी ये नहीं कहना नहीं छोड़ रहा है कि मजा आ गया। किसी निमित्त से आता है, किसी बाह्य साधनों से आता है मजा। साधन निरपेक्ष आनंद आता है, आनंद अपना स्वरूप है, मजा अपना स्वरूप नहीं है। ये वेदांत का रहस्य है वो। इसलिए मजा के लिए क्या चाहिए, अन्यों की जरूरत पड़ती है, अन्यों के संबंध से मजा आता है। क्रीडार्थम सृजति प्रपंचम अखिलम। हे पशुपति, खेल के लिए अपने सारे प्रपंचों की रचना की है, खेलने के लिए की है रचना। ये रहस्य न समझने वाले व्यक्ति हर प्रसंग में परमात्मा पर दोषारोपण करते हैं। ये परमात्मा ने जगत क्यों बनाई, नहीं बनाता तो उसका क्या बिगड़ता। दुखालयम अशाश्वतम, गीता का वाक्य है ना। ये संसार कैसा है, अनित्यम असुखम लोकम दुखालयम अशाश्वतम, ये गीता के वाक्य हैं। ये दुखालयम अशाश्वतम अनित्यम असुखम, इस लोक की रचना किसने की? भगवान ने उत्तर दिया है कृष्ण ने, हे अर्जुन, इन सब की रचना मैंने की है।
1: Om Namah Shivaya. Dear users of Shaivam.org, we are very much delighted to let you all know that due to the shower of grace from Almighty Lord Shiva and the continuous support from esteemed users like you, our Shaivam.org website had passed 26 successful years of service in the world of Shaivam, and it is all set to sustain the same with lot more new features in the forthcoming years as well. Adding to that, like one more diamond embedded to the golden crown, we are pleased to inform the existence of a new radio, Shiva Tattvam, specifically designed to telecast Shaiva discourses. It's a humble request to you to listen that as well and extend your support. Now you can listen all the Shaiva discourses being scheduled in Shaiva Lahari and Thiruneriya Tamilosi radios in Shiva Tattvam radio only. Thanks for your esteemed support. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shiva Mahimna Stotra in Hindi, presented by Swami Sri Dharmanandiji. Thank you. Om Namah Shivaya.
2: So we dhoondte Maharshi Kapil ke ashram mein jaate hain। वहां एक खंभे से बंधी हुई अश्व को देखकर इन्हें बहुत क्रोध आता है और महर्षि के आश्रम में उत्पात शुरू कर देते हैं। इधर महर्षि समाधि में बैठे हुए हैं, उत्पात से उनकी समाधि भंग हो जाती है, उन्हें बड़ा क्रोध आता है। उनके क्रोधाग्नि से महाराज सगर के 60,000 पुत्र जलकर भस्म हो जाते हैं। इधर दूत ने महाराज सगर को समाचार सुनाया कि महर्षि कपिल के आश्रम में आपका यज्ञीय अश्व बंधा हुआ है और महर्षि के कोप से 60,000 पुत्र जलकर राख हो गए हैं। सगर के दूसरे पुत्र अंशुमान जाते हैं, जाकर महर्षि की प्रार्थना करते हैं, क्षमा याचना करते हैं कि हमारे भाइयों से भूल हो गई, आप इन्हें क्षमा कर दीजिए। महर्षि प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं तुम यज्ञ अश्व को ले जाओ और अपने यज्ञ को संपन्न करो। अंशुमान ने पूछा कि जो हमारे भाई जलकर राख हो गए हैं, इनका उद्धार कैसे होगा? महर्षि कहते हैं कि ब्रह्म साप से दग्ध हुए लोगों का उद्धार केवल गंगा ही कर सकती है। तुम भगवती गंगा की तपस्या करो, गंगा प्रसन्न होकर जब धरती पर आएगी तभी तुम्हारे भाइयों का उद्धार होगा। अंशुमान अश्व को ले जाते हैं, यज्ञ कर्म संपन्न करते हैं, तदनंतर तपस्या करने लग जाते हैं। 3 पीढ़ी तपस्या की इसके बाद गंगा का अवतरण होता है। जैसे हम कोई जैसे किसी के दादा दुकान खोलें, उसके बाद पिता फैक्ट्री खोलता है और जो पुत्र होता है उस फैक्ट्री के द्वारा संसार में विस्तार करता है। इसी प्रकार से महाराज अंशुमान तपस्या करते करते शरीर पूरा हो गया। उनके पुत्र महाराज दिलीप ने तपस्या की। दिलीप के सुपुत्र जब महाराज भगीरथी ने तपस्या करी तब जाकर भगवती गंगा प्रसन्न होकर दर्शन दिया। गंगा ने कहा तुम वरदान मांग लो। गंगा के कहने से ये पुनः प्रार्थना की कि मां मैं अपने भाइयों को उद्धार के लिए तुम्हें धरती पर आमंत्रित करता हूं। भगवती गंगा ने कहा मैं तो पृथ्वी पर चलने को राजी हूं, परंतु हमारे वेग को कौन रोकेगा, हमारे प्रवाह को कौन संभालेगा? ब्रह्मा जी से मंत्रणा करते हैं। मंत्रणा करने के बाद इन्हें मालूम पड़ा कि भगवान शंकर ही केवल गंगा के वेग को संभाल सकते हैं। दोबारा पुनः हिमालय जाते हैं, वहां एक शिव की पिंडी बना करके भगवान शिव की पूजा करने लगते हैं। भगवान शिव महाराज भगीरथी की तपस्या से प्रसन्न होकर कहते हैं वरम ब्रूहि, वरम ऋणीष्व। महाराज भगीरथी हाथ जोड़कर खड़े हैं, भगवान शंकर दिव्य मुद्रा में बरधस्थ होकर दर्शन दे रहे हैं। महाराज भगीरथी ने कहा कि भगवती गंगा ने कहा है मैं पृथ्वी लोक पर आने के लिए राजी हूं, परंतु हमारे वेग को कौन संभालेगा, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं या भगवती गंगा के वेग को संभालने के लिए पधारिए। भगवान शंकर ने तथास्तु कर दिया। इधर प्रसन्न होकर भगीरथी आते हैं। जैसे ही ब्रह्मांड को भेदन करती हुई गंगा जी धरती पर पधारती है, उसी गंगा जी का चित्रण इस 17वें श्लोक में किया गया है कि जो गंगा आकाश को व्याप्त करके रखी है, उस गंगा की शोभा कैसी है। तो जिस प्रकार से जल में सूर्य चंद्र तारा प्रतिबिंबित होते हैं, उनकी शोभा बढ़ जाती है, इस तरह से तारा गण के समुदाय से उनके प्रतिफलन से भगवती गंगा की शोभा उज्जवल फेन के समान बहुत ही सुंदर लग रही है। वही गंगा जब भगवान के सिर में आती है तो वह गंगा जी मानो चमकती हुई एक सुनहरला लकीर के समान भगवान शंकर की जटा में समा जाती है। जटा में भगवान शंकर उसको लपेट लेते हैं। भगवान शंकर में के जटा में जब गिरती है तो प्रीखत लघुदृष्ट शिरसिते, बहुत छोटी सी तारा के समान वह टिमटिमाने लगती है। वही गंगा के द्वारा जिस सागर को कुपित होकर अगस्त ऋषि ने पी लिया था, जो सागर खाली हो गया था, उस गंगा के प्रवास से पूरा सागर भर जाता है और उस समुद्र के द्वारा ये जगत दीपाकार रूप में परिणत हो जाता है। तव दिव्य उपुह धृत महिमम, आपके महिमा के विषय में क्या कहना, आपकी बड़ी दिव्य महिमा है। यह तो एक ऐतिहासिक पौराणिक तथ्य है। इधर हम विचार करें कि जो ज्ञान गंगा है, ज्ञान गंगा का जब अवतरण हुआ, ज्ञान गंगा का अवतरण श्रुति के अनुसार ज्ञानम इच्छित शंकरा, भगवान शंकर से ज्ञान की इच्छा करनी चाहिए। ये सगर जीव ही सगर है। गरेण सहित सगर, गर बोलते हैं जहर को, वासनाओं का जो जहर है जिससे मनुष्य पीड़ित रहता है, तो अविद्या कामना वासना ही तो जहर है। इसके साथ यह जीवात्मा पैदा होता है। ये 60,000 पुत्र ये हमारे मन की अनंत वृत्तियां हैं। इन अनंत वृत्तियों से मनुष्य हमेशा परेशान रहता है। महर्षि पतंजलि जी भी कहते हैं योगः चित्त वृत्ति निरोधः, सारे वृत्तियों को के निरोध से ही जीवात्मा परमात्मा का मिलन होता है। जो अनादिकाल से जीव और ब्रह्म के बीच में वासनाओं का खाई बना हुआ है, उस खाई को यह वेदांत जीव ब्रह्म का ऐक्य ज्ञान पाटने का काम करता है। यह जीव ही सगर है। मन के अनंत वृत्तियां ही 60,000 पुत्र हैं। और जब मनुष्य ऋषि महर्षियों का आश्रय लेता है, सदगुरु का वही कपिल महर्षि है, उनसे प्रेरित होकर के भगवान शंकर से दिव्य ज्ञान का प्रादुर्भाव होता है। श्रेष्ठाचार्य जी कहते हैं, श्रेष्ठाचार्य जी महाराज का यह कथन है, तत्मस्यादि वाक्योत्थम सम्यक जन मात्रतः अविद्या सहकारेण नासीद अस्ति भविष्यति। तत्मस्यादि से उत्त जो ज्ञान है, वह ज्ञान अविद्या को समाप्त करके स्वरूप को प्रकाशित करता है। यह जो ज्ञान है, इसी ज्ञान के द्वारा जीव परम शांति को उपलब्ध होता है। दूसरा कोई भी साधन नहीं है जो परम शांति को उपलब्ध करा सके। आगे विचार करते हैं दूसरे श्लोक के ऊपर। रथाक्षोणीयन्ता सतधृतिरगिन्द्रो धनुरथो रथांके चंद्रार्को रथचरण पाणीशर इति दिधावस्ते कोयम् त्रिपुण त्रिणमाडंबर विधि विधेयै क्रीडन्त्यो न खलु परतंत्रा प्रबुधिय। पृथक छोणी यंता, अब यहां पर ज्ञान गंगा के महिमा को बतला रहे हैं। ज्ञान होने पर क्या होता है? इधर एक बड़ा भारी त्रिपुरासुर है, भोगी और योगी दोनों ही तपस्या करते हैं। भोगी की तपस्या का लक्ष्य होता है शक्ति संचय करके भोग करना, साम्राज्य को बढ़ाना, और योगी तपस्या करता है, वह तपस्या से ज्ञान को उपलब्ध होना चाहता है। जैसे किसी के पास बहुत धन हो, यदि वह सत्संगी है, विवेकी है, ज्ञानी है, तो उस धन का सदुपयोग करता है, सुंदर धर्मशाला बनवाता है, स्कूल बनवाता है, मठ मंदिर संतों के सेवा में लगाता है, और वह उस धन के द्वारा दिवाचन करके परम गति को प्राप्त करता है। और वही धन किसी अविवेकी के पास, नासमझ के पास है, तो वह अय्यासी पूर्वक जीवन बिताता है और भोगे रोग भयम, अनेक प्रकार के रोगों में उसके धन खर्च होते हैं, केस मुकदमे में खर्च होते हैं, जुआ शराब में खर्च होता है, क्लेश में, कलह में, लड़ाई झगड़े में खर्च करता है। कोई दान के लिए आए तो एक कौड़ी नहीं दे पाता है, परंतु ये काले कोट वाले को जो यमराज के दूत है, इनको जो है हमेशा वह अपने धन को उसी में खर्च करता है, अर्थात दुरुपयोग में अपने धन को लगा देता है। एक ही धन है, ज्ञानी सदुपयोग करता है, धन से परमार्थ को सिद्ध करता है, परमार्थ के साधन में लगाता है, और जो अज्ञानी है उस धन के द्वारा अय्यासी पूर्वक जीवन बिताता है। स्वयं वेदव्यास भगवान कहते हैं, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रिया कलहे न। धन ही नहीं, अपने आयु का ज्ञानी सदुपयोग करता है तो अज्ञानी दुरुपयोग करता है, निद्रिया कलहे न। आप लोग भगवान कृपा से इससे मुक्त हैं। 4 बजे उठ जाते हैं, उठकर जल्दी स्नान करके नित्य कर्म करके 7 बजे प्रेमपुरी पधार जाते हैं। अन्यथा विवेक न होता तो आप 8 बजे तक सोते और 9 बजे तैयार होके सीधा ऑफिस में दौड़ते। जैसे एक मुमुक्षु तपस्या करता है वैसे एक व्यापारी भी करता है। जो व्यापारी तपस्या करता है उस व्यापारी की तपस्या का लक्ष्य होता है अधिक से अधिक धन कमाना। व्यापार ही बड़ा भारी कष्ट होता है, पर वो जो कष्ट तपोमय है उसके द्वारा मात्र धन संचय करता, धन भी भोग के लिए, न वह उससे दान करता है न दिन भी गरीब की सेवा करता है, तो दोनों में इतना ही फर्क है। इधर यहां पर भी एक बड़ा भारी जो असुर है जिसका नाम है त्रिपुरासुर, त्रिपुरासुर तपस्या करता है और तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करता है। उसके वरदान का एक ही लक्ष्य है, लक्ष्य वह यह है कि मुझे तीनों लोकों पर शासन करना है, परंतु वह तपस्या करके जब ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया तो प्रसन्न कर लेने के बाद ब्रह्मा जी ने उससे कहा कि तू वरदान मांग, तो ब्रह्मा जी से वरदान में वह मांगता है कि मैं अमर हो जाऊं, मेरे किसी से मौत न हो। आसुरी प्रकृति वाले को मौत से बहुत भय लगता है, सबसे पहला उनका मांग होता है अमरता का। ब्रह्मा जी ने कहा वत्स, अमर बनाना मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर है, अमर तो केवल तत्व ज्ञान से हो सकते हैं, क्योंकि जो जन्मता है वह मरता है, ये प्रकृति का सिद्धांत है। जो मरेगा तो जन्मेगा, जो जन्मता है सो मरता है, इसलिए तू दूसरा वरदान मांग ले। त्रिपुरासुर विचार कर अमर के समान वरदान मांगता है कि आप कृपा से हमें ऐसा तीन महल दीजिए, विमान बनाइए, जो देवताओं से, मनुष्यों से, असुरों से अभेद्य हो और उसका भेदन भी हो, तो तीनों एक साथ हो तभी जाके भेदन हो सके। एक लौह में विमान, दूसरा चांदीमय, तीसरा स्वर्णमय, तीन विमान वरदान में मांगता है। उस विमान पर सवार होकर त्रिपुरासुर तीनों लोकों में त्राही त्राही मचा देता है। सारे देवता भाग खड़े हुए कंदराओं में जाकर तपस्या करने लग रहे। एक छत्र ब्रह्मांड में साम्राज्य स्थापित हो गया। देवता लोग भग कर कैलाश जाते हैं, भगवान के चरणों में जी कर प्रार्थना करते हैं, महादेव त्राही माम त्राही माम। त्रिपुरासुर पूरे संसार में आतंक मचा दिया है, आप कृपा करके इसका वध कीजिए, इससे हमें निजात दिलाइए। त्रिपुरासुर सबसे पहले देवताओं की, ब्राह्मणों की पूजा बंद करा दी, यज्ञ याग बंद करा दिया और कहा कि मत्तः परतरम को अन्य, मेरे से भिन्न दूसरा कोई नहीं है, मैं ही एक सबकी आत्मा ब्रह्म ईश्वर हूं, मेरे से भिन्न दूसरा कोई भी ईश्वर नहीं है। सबको ऐसा उपदेश करके यज्ञ याग सत्कर्म से सबको निवृत्त करा दिया। जब देवताओं ने अपनी पीड़ा महादेव को सुनाई तो महादेव देवताओं को आश्वासन देकर विदा करते हैं और स्वयं ही त्रिपुरासुर के संहार के लिए पधारते हैं। रथोणी यंता, इस त्रिपुरासुर के संहार के लिए, क्योंकि उसका विमान कभी भी कहीं भी जाता है, सबसे अभेद्य है, इसलिए उसके अनुरूप ही एक जो है रथ की तैयारी करते हैं। पृथ्वी को तो रथ बनाया, ब्रह्मा जी सारथी बने, सुमेरु को धनुष बनाया और रथ के पहिए चंद्रमा और सूर्य हुए। रथ चरण पाणि जो भगवान विष्णु है वे सर बने। इस प्रकार से त्रिपुरासुर तिनके को भगवान ने आडंबर खेल खेल में ही समाप्त किया। भगवान स्वतंत्र है, सब कुछ कर सकते हैं, फिर भी अन्य देवताओं को, पृथ्वी को महत्व देने के लिए, ब्रह्मा जी को, विष्णु को, सूर्य चांद को महत्व देने के लिए ही इस प्रकार से लीला की। जब भगवान ने अट्टहास किया, उनके अट्टहास से ही तीनों पूर्व खलक्खट एक हो गए। जैसे एक हो गए वैसे भगवान शंकर ने तत्काल बाण का अनुसंधान किया और उसे विद्ध होकर तीनों पूर्व में आग लग गई, त्रिपुरासुर का नाश हुआ। यह तो एक पौराणिक तथ्य है, आइए विचार करते हैं आध्यात्मिक रहस्य के ऊपर। ये जीव ही त्रिपुरासुर है, ये जो स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर है यही समझो तीन पूर है और इसमें जो भोग बुद्धि रखता है वही भोगाभिमान जीव त्रिपुरासुर है और इसका नाश तभी होता है जब तीनों एक सीधी लाइन में हो, मतलब मनसा वाचा कर्मणा। ये तीन पूर है, कर्मणा अपने शरीर से निष्काम कर्म करें या जो है भगवत भक्ति करें, देवाचरण करें, माता की पार्वती के समान सेवा करें, पिति देव भव पिता को साक्षात माधव माने, आचार देव भव गुरु आचार्य को देवता समझें। इस प्रकार से शरीर के द्वारा क्रिया निष्पन्न करता है। यत यत कर्म करोमि तत्तद अखिलम शंभो तव आराधनम्। और मन से भी तदनुसार ही स्मरण करता है, भगवान के नाम को उच्चारण करना, मन से चिंतन करना, सदग्रंथों का स्वाध्याय करना, प्रवचन करना। जब मनसा वाचा कर्मणा एक हो जाता है तब जाकर के इस तीनों पूर्व का भगवान शंकर ज्ञान के द्वारा भेदन कर देते हैं। देहत्रय के नाश से ही हमेशा के लिए ये मुक्त हो जाता है। यही आध्यात्मिक त्रिपुरासुर का रहस्य है। आज से लगभग 50 वर्ष पहले एक बड़े भारी करोड़पति थे। उन्होंने एक बड़ा सुंदर धर्मशाला बनवाया, अन्य क्षेत्र खोले, एक विद्यालय भी खोला, उसमें ब्राह्मण विद्यार्थी पढ़ा करते थे, वेदाध्ययन चलता था। कोई भी दरवाजे पर आता था वह खाली हाथ नहीं लौटता था। ये सनातन धर्म है, अतिथि आए तो खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। अतिथि देवो भव। यदि अतिथि घर से लौट जाता है तो पापम दत्वा पुण्यम आदाय गच्छति। अतिथि अग्नि रूप से घर में प्रवेश करता है, अतिथि का स्वागत नहीं किया गया तो आपके सुकृत को ले जाता है और दुष्कृत को छोड़कर जाता है। इसलिए अतिथि को देवता मान करके हमेशा सेठ की पूजा किया करते थे। कुछ काल तक चलता रहा, जैसे ही पिताजी का शरीर छूट गया सेठ जी का, कुछ काल तक बच्चों ने भी चलाया, परंतु कालांतर में बच्चों ने पुनः क्षेत्र बंद कर दिया। धर्मशाला के लिए भी कुछ उसमें भी नियम लगा दिया, रसीद काटना शुरू कर दिया कि एक कमरे का कम से कम 100 रुपया है। एक महात्मा गुजरे जो उसके पिता के गुरु लगते थे। उन्होंने पूछा कि बच्चों, तुम्हारे पिता ने इतना सुंदर विद्यालय खोला, धर्मशाला बनाया, अब तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, परंतु इस धर्मशाले में तुम लोग 100 रुपये की रसीद किस बात की काटते हो? क्या कुछ व्यापार में घाटा तो नहीं लगा? बच्चों ने कहा, महाराज जी आप बात ठीक कहते हैं, कोई हमें व्यापार में घाटा नहीं, व्यापार और पहले से बढ़ गया, पैसे भी काफी हो गए, पर ये 100 रुपया जो हम लोग लेते हैं ना मेंटेनेंस के हैं, क्योंकि 100 रुपया नहीं लेंगे तो मेंटेनेंस कैसे होगा, ये व्यवस्था के लिए है। महात्मा जी ने कहा कि तुम्हारे पिता एक पैसा नहीं लेते थे, कोई भी आए उसे धर्मशाला में जगह देना, उसका स्वागत करना, उसके भोजन की व्यवस्था करना और सत्संग सुना करते थे। ये भोग वृत्ति का लक्षण है कि जब आदमी के अंदर भोग वृत्ति आती है तो वह अपने पिता पितामह पैतृक के संपत्ति का भी सदुपयोग नहीं करता है, बल्कि उसका भी वह दुरुपयोग करता है, उसमें से भी कुछ कमाना चाहता है, लाभ उठाना चाहता है। यही भोग और योग में अंतर है। इसीलिए हमारे जीवन में ये जब तक त्रिपुरासुर रहेगा तब तक शांति नहीं मिलेगी। त्रिपुरासुर का अर्थ भोग वृत्ति, और भोग वृत्ति को मिटाने का एक ही रास्ता है कि हम अपने जीवन में विवेक को, ज्ञान को जगह दें। और विवेक ज्ञान को उपलब्ध होने के लिए कोई न कोई अवलंबन होना चाहिए। जैसे आपको विद्युत को जानना है तो विद्युत को जानने का अवलंबन है, चाहे आप ट्यूबलाइट लाइट से जाने या पंखे से जाने या कूलर से जाने या फ्रिज से जाने, जिससे सारे यंत्र संचालित हो रहे हैं, जिससे दूर दूर तक ध्वनि जा रही है, प्रसारित हो रही वही विद्युत है, जिससे लाइट प्रकाश कर रही वही विद्युत है, जिससे पंखे चल रहे हैं वही विद्युत शक्ति है। माध्यम अनेक हो सकते हैं परंतु पावर एक है। ऐसे चाहे भगवान श्री कृष्ण की उपासना करें, श्याम सुंदर की उपासना करें, या भगवान शंकर की, या भगवान विष्णु की, या भगवती दुर्गा की, किसी की भी, सुधाया पानम अमृतत्व हेतु हो, सुधा का पान ही अमृतत्व का हेतु है। चाहे पात्र सोने का हो, चांदी का हो, या लकड़ी का हो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे हमें उपासना करना चाहिए, साधना करना चाहिए, चाहे किसी भी देव का हो। उपासना करने से अंतःकरण निर्मल होता है। ज्ञानम उत्पयते पुंसाम क्षयात् पापस्य कर्मणः। जब पापीय कर्म उपासना से क्षीण हो जाते हैं तो अपने आप निर्मल अंतःकरण में ज्ञान गंगा का अवतरण होता है। इस प्रकार से यहाँ पर बताया गया, शेष बात कल विचार करेंगे। प्रेम से बोली सच्चिदानंद भगवान की जय।
3: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
3: ओम नमः शिवाय।

0: Om Shivaya Nama. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Dakshinamurti Stotram, presented by Swami Sri Pratyak Bodhanandaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
1: Bole Shachidananda Bhagavani Ki, Shadgurudeva Bhagavani Ki, परम पूज्य प्रातःस्मरणीय श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणारविंदों में साष्टांग प्रणाम। परम पूज्य परम श्रद्धे श्री प्रेमपुरी जी महाराज के श्री चरणारविंदों में साष्टांग प्रणाम। हम सभी लोग आज हमारे पूज्य गुरुदेव के पावन प्राकट्य दिवस के उपलक्ष्य में, जिसको हम लोग आनंद जयंती महोत्सव के नाम से जानते हैं, सभी संत महापुरुष और हमारे भक्त वृंद उपस्थित हैं। सर्वप्रथम श्री मधु भाई तिजोरी वाला, गिरीश भाई ड्रेस वाला, श्री ललित ग्रोवर, श्री राजकुमार शोरे वाला संतों का माल्यार्पण करेंगे। गुरुदेव की कृपा से आज हम सभी लोग यहां उपस्थित हैं उनके पावन आनंद महोत्सव में। अनेक संत महापुरुष बड़ी कृपा पूर्वक यहां पर पधारे हैं। हमारे स्वामी श्री उमेशानंद जी महाराज, जो ज्ञान वृद्ध वयोवृद्ध हम सभी के मार्गदर्शक हैं, उनसे हम सभी लोग आज की सभा की अध्यक्षता के लिए निवेदन करते हैं और उन्होंने हम लोगों को कृपा पूर्वक स्वीकृति दी है। पूज्य स्वामी प्रत्येक बोधानंद जी, पूज्य स्वामी स्वरूपानंद जी, यहां जो कई लोग बैठे हैं महाराज जी के सेवा में, आप लोगों ने उनको देखा है, इस समय शायद पहचान नहीं पा रहे होंगे कई लोग। क्यों गिरीश भाई, पहचान रहे नहीं? स्वरूपानंद जी वो बैठे, क्योंकि उनका थोड़ा वेश बदल गया है। तो पूज्य स्वामी प्रबुद्धानंद जी, स्वामी गोविंदानंद जी, स्वामी विमलानंद जी और स्वामी स्वरूपानंद जी, तो चारों सेवा में रहते थे, वो स्वाभाविक यहां पधारे, बड़ी खुशी की बात है। हमारे पाठक जी श्री श्रीनिवास जी पाठक, जिन्होंने महाराज जी के अमृत महोत्सव का बड़ा कुशल संचालन किया था और रामकथा के बड़े सरस वक्ता हैं, वो भी बड़े प्रेम पूर्वक यहां पधारे। हमारे स्वामी हरतीर्थ जी महाराज, हम लोगों को पता नहीं था कहाँ रहते हैं, कोई एड्रेस नहीं था, लेकिन बड़ा प्रेम है इनका, प्रतिवर्ष ये उत्सव में ध्यान रख के यहां पधारते हैं, इनका स्नेह है। सभी संतों के इस समागम में हम लोग कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम श्री हमारे मधु भाई, वो भी हमारे सबसे वयोवृद्ध महाराज जी के भक्त हैं, अपने भाव महाराज जी के इस पावन प्रसंग पर प्रकट करेंगे। श्री मधु भाई तिजोरी वाला।
2: परम पूज्य महाराज जी के श्री चरणों में मेरा प्रणाम, सब संतों के मेरा प्रणाम। 50 साल के ऊपर की बात है, मेरा पिताजी महाराज जी को सुनने के लिए प्रेम कुटीर में नरीमान पॉइंट पे, वहां साथ तो शाम को 5:30 से 6:30 बजे का प्रवचन महाराज जी का होता था, वहां जाते थे। मुझे कहता था कि तुम चलो सुनो महाराज जी को, आपको आनंद आएगा। तब इतना दिमाग में मेरा नहीं उतरता था। पीछे क्या हुआ कि महाराज मेरा पिताजी को लेने के लिए मैं 6:10 बजे वहां पहुंच जाता था। बूट टाइप कोट पैंट टूट पहना हो तो अंदर तो जा नहीं सकता था, बाहर से महाराज जी की वाणी में सुनता था 10 मिनट के लिए। और इतने में मेरा पिताजी का देहावसान हो गया और एक धक्का मारा और मैं महाराज जी का भक्त हो गया। अब देखिए, ये समय पे महाराज जी का भागवत पर प्रवचन क्राइस्ट मैदान में होता था। अब ये मेरी ऑफिस से बहुत नजदीक में था, तो मेरी माता जी को, मेरी बहन कुछ को मैं वहां रख के ऑफिस आता था, वहां से वहां भी 2 घंटा बैठता था। ये मेरी पहले महाराज जी के साथ पहचान हो गए। पीछे तो मैं महाराज जी का अनन्य भक्त हो गया, माने महाराज जी हो तो मैं सुनने के लिए जाऊं, नहीं तो मैं सत्संग में नहीं जाता था। महाराज जी के वाणी सुनते सुनते सत्संग का महिमा ऐसा बैठ गया कि पीछे कोई दिन भी ऐसा न जाए कि जब मैं सत्संग में ना आ पाऊं। कोई भी संत महात्मा का प्रवचन हो तो मैं सुनता रहता था। और ये बात आज 50 साल हो गया। और महाराज जी के सत्संग में महाराज जी का भागवत मैंने 1 हफ्ता का सुना, 2 हफ्ता का सुना, 3 हफ्ता का सुना, ऐसा महाराज जी का भागवत थे। और जब 3 हफ्ते का महाराज जी का भागवत था तब वहां हरिद्वार में सब 200 संत महात्मा भागवत की पुस्तक लेके बैठ जाते थे। स्वामी चन्मयानंद जी भी महाराज भी आके बैठे थे। ये बड़े सत्संग की महिमा थी महाराज जी का। पीछे महाराज जी का प्रवचन महाराज जी तो बताते थे कि शास्त्र की कोई भी बात की संगति लगा रहा तो मैं लगा सकता हूं, शास्त्र कोई भी बात मेरे से छुपाते नहीं है, ऐसे सत्संग का महिमा महाराज जी का था। पीछे वो भक्ति मार्ग होवे, ज्ञान मार्ग होवे, तो ऐसा लगे कि ऐसा ज्ञानी कोई है ही नहीं। भक्ति की बात करें तो ऐसा भक्त कोई है ही नहीं। ऐसा संत महात्मा के चरणों में बैठने का हमें बहुत ही सत्संग का लाभ मिला, और ये भी आज तक भी मिलता रहता है। स्वामी जी महाराज के चरणों में मेरा प्रणाम।
1: बहुत सुंदर मधु भाई ने अपने भाव और स्वाभाविक सहज उनकी जो अनुभूति थी वो व्यक्त की महाराज जी के चरणों में। अब हमारे प्रेमपुरी आश्रम के आचार्य और पुरोहित पंडित विश्वनाथ जी शास्त्री, जो हमेशा प्रत्येक प्रसंग में पूजन का कार्यक्रम संपन्न करवाते हैं, वो मंगलाचरण के साथ अपने भाव पुष्पांजलि महाराज जी के इस आनंदोत्सव में समर्पित करेंगे।
3: वागर्था विवसं प्रोक्तो वागर्थ प्रतिपत्तये जगत पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज की, आज के आनंद की। परम पूज्याः अध्यक्ष महाभागाः संतः उमेशानंद जी, परम पूज्याः प्रत्येक बोधानंद जी महाभागाः, परम पूज्याः संतः गिरीशानंद जी महाभागाः, परम पूज्याः स्वरूपानंद जी महाभागाः, उपस्थिताः संतः विद्वद्वरेण्यः पाठक जी महाभागाः, उपस्थित सभी भक्तजन, हमारे आश्रम के ट्रस्टीगण, मुझे 2 मिनट आनंद जयंती के उपलक्ष्य में बोलना है। सर्वप्रथम यही जो भारतीय संस्कृति है उसके बारे में कि हमारे शास्त्रों ने 4 पुरुषार्थ बताए हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये सबको विदित हैं, लेकिन वैसे ही 3 ऐषणाएं बताई हैं। व्यक्ति का जीवन इन ऐषणाओं पे निर्भर रहता है। ऐषणा मतलब इच्छा, प्राणेषणा, धनेषणा और परलोकेषणा। हर व्यक्ति स्वस्थ रहना चाहता है, ये सामान्य सिद्धांत। ऐसा नहीं कि कोई अस्वस्थ चाहता ही नहीं अपने आप को, तो प्राणेषणा मतलब स्वस्थ रहना चाहता है हर व्यक्ति। और जीने के लिए धन की आवश्यकता रहती है, तो दूसरे नंबर पे धनेषणा दिया, और वैसे ही तीसरे क्रमांक पे परलोकेषणा है। तो ये परलोकेषणा का मतलब होता है भारतीय सिद्धांत में, भारतीय संस्कृति में परलोक को मान करके अच्छी गति हो उसके बारे में इच्छा करना। अब अनेक प्रकार के इसमें धर्मशास्त्र के सिद्धांत हैं, लेकिन किसी महापुरुष ने कहा है कि महाजनो ये न गतस्य पंथाः। अनेक तर्क हैं, धर्म के विचार अनेक अनेक हैं, लेकिन इस ऐषणा को जानने के लिए किसी महापुरुष के वाक्यों के चरण में चले जाओ, कहीं जाने की जरूरत नहीं, किसी महापुरुष के वाक्यों के चरण में चले जाओ तो परलोकेषणा साध्य हो सकती है। मेरा यही कहना है कि महाराज जी के प्रवचनों को मैंने कम सुना है, लेकिन साहित्य के दृष्टिकोण से मैं देखता हूं, सत साहित्य प्रकाशन के जितना साहित्य है महाराज जी के प्रवचनों का, वेदों के वाक्य, वेद का, उपनिषद के, पुराणों के, वेदांत के, कोई भी महाराज जी से अछूता नहीं, अलग नहीं है। कोई भी विषय, व्याकरण का विषय रहे, मैंने तो बहुत जगह काम सूत्र का उल्लेख करके बताते हैं, यहां पे ऐसा लिखा हुआ है, यहां पे ऐसा लिखा हुआ है, तो ऐसा कोई भी विषय नहीं छोड़ा है। मेरा आज के दिन का कहना यही है कि इधर उधर जाने की हमको कहीं जरूरत नहीं। महाराज जी का जो प्रवचनात्मक साहित्य है उसको पढ़ करके महाराज जी के चरण में बैठ जाइए, और आनंद ही नहीं, कहां पे हम पहुंच जाएंगे, अखंड आनंद के चरण में हम पहुंच जाएंगे, तो फिर आनंद की अनुभूति और परलोकेशन अपने आप साध्य हो सकती है। यही मेरे आज के दो वाक्य हैं। बोलिए स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज की जय।
1: बहुत सुंदर विश्वनाथ जी ने बड़ी सुंदर बात कही। पूज्य महाराजा श्री जी के ग्रंथ ही उनकी उपस्थिति की अनुभूति करा देते हैं, उनका वांग्मय विग्रह है। हम लोग उससे भी बहुत मार्गदर्शन लेते हैं। अब हमारे पाठक जी के पौत्र हैं अभिषेक, वो महाराज जी के चरणों में एक दो श्लोक सुनाना चाहते हैं। अनेक संतों के प्रिय हैं, वो जो स्वामी गुरु शरणानंद जी का भी बड़ा प्रेम है इन पर, तो एक श्लोक सुनाएंगे, एक श्लोक दो श्लोक जो भी, तो और उसके बाद हमारे आदरणीय सोमदत्त जी अपने भाव व्यक्त करेंगे।
4: ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए श्री गुरुदेव भगवान की। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री महाराज श्री के श्री चरणारविंद में इस बालक का प्रणाम। उपस्थित सभी संत वृंद एवं गुरुदेव के श्री चरणों में मेरा प्रणाम एवं सभी महानुभाव। आज मेरा बड़ा सौभाग्य है जो पूज्य महाराज जी की आनंद जयंती पर मुझे सभी संतों को श्रवण करने का एवं महाराज जी के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं इस योग्य तो नहीं हूं कि कुछ बोल सकूं, लेकिन अपनी वाणी पवित्र करने हेतु दो शब्द संतों से ही सुना हुआ मैं आपके सामने रखता हूं। हमारे सनातन धर्म में गुरु को विशिष्ट स्थान दिया गया है, सर्वोपरि गुरु हैं। यहां तक कि भगवान से भी ऊपर हम गुरु को मान्यता देते हैं। भगवान शंकर की पूजा करें, भगवान विष्णु ब्रह्मा जी और आदि आदि सभी देवताओं की पूजा करें, परंतु इनकी पूजा ना करके केवल हम पहले गुरु की पूजा भी करें तो उन सब की पूजा हो गई। क्योंकि हम सभी लोग इस श्लोक का श्रवण करते हैं, गान करते हैं कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु, गुरु ही ब्रह्मा है, गुरुदेव ही विष्णु है, गुरुदेव ही शंकर हैं एवं साक्षात परब्रह्म श्री गुरुदेव हैं। और उसमें भी ऐसे सद्गुरुदेव, ये हमारे लिए एक बोनस पॉइंट जैसा है। मैंने महाराज जी के दर्शन नहीं किए इसीलिए उनके बारे में बोलना इतनी योग्यता नहीं है, परंतु कुछ उनके एक श्लोक जब हम स्तुति करते हैं तो महाराज जी के श्लोक में आता है कि पवित्रा यद वाणी प्रविशति विचित्रा हृदि यदा तदाकारा छिन्ना भवति निखिलाकार घटिता। जब हम महाराज जी के पवित्र वाणी को हृदय में लेते हैं, यानी उनकी पवित्र वाणी हमारे हृदय में प्रवेश करती है, तो ये जो नाना ये नाम और रूप से जो बना हुआ संसार है ना, जेल, जब उनकी वाणी हमारे हृदय में प्रवेश करती है तो ये जो नाम और रूप से बना हुआ संसार है वो छिन्न भिन्न हो जाता है। अर्थात हमें इस नाम और रूप का बोध हो जाता है और उस ईश्वर तत्व की प्राप्ति होती है। ये महात्मा महाराज जी का है और मुझे आज्ञा हुई थी बोलने की, लेकिन मैंने दो शब्द बोलकर अपनी वाणी पवित्र किया। बोलिए श्री गुरुदेव भगवान की।
1: अभिषेक ने अपने भाव व्यक्त किए। अब आदरणीय श्री सोमदत्त जी गद्य और पद्य कविता के रूप में इस आनंद जयंती को आनंदमय बनाएंगे।
5: नारायण नारायण नारायण नारायण। ये महाराज जी का आनंद जयंती का 101वां अवसर है। पिछले साल हम लोग 100 मनाए, तो विशेष अवसर हो गया 101 का, 100 से ज्यादा का मार्क में हो गया। और इसका उल्लास, इसका उत्साह आप सबकी उपस्थिति से हृदय में उछलते हुए आनंद से प्रकट है। बात पिता पुत्र की तिजोरी वाला जी ने की, उस पिता का इनको घर ले जाना ले आना आनंद से सराबोर करता है। हमारे शास्त्री जी की बात पुस्तकों की थी, वो भी नहीं छोड़ता, वो जब हम पढ़ते हैं तो वो हमें आनंद से विभोर करता है। हमारा प्रेमपुरी में आना हमको आनंद देता है। श्रावण महीने में शंकर जी का अभिषेक, अभिषेक की वाणी से प्रकट होता है। ये सब आनंद के कारण घूम फिर के हमको आनंद देते हैं। तो ये जो छोटा छोटा छोटा छोटा आनंद कहीं एक अखंड आनंद बन के बैठ जाता है, जो जन्म मरण को काटता है, ये हम यहां सुनने के लिए आते हैं। वो जन्म क्या है, वो मृत्यु क्या है, एक पावन प्रसंग नाम का ग्रंथ है जो महाराज श्री की जीवनी की एक छोटी सी रूपरेखा है। महाराज श्री से किसी ने कहा कि कोई आपकी जीवनी लिख दे, जन्म कैसे हुआ, क्या रहा जीवन में। महाराज श्री ने कहा कि एक गांधी जी की जीवनी लिखने को नेहरू जी को बोल दो और गांधी जी की जीवनी चर्चिल को बोल दो लिखने के लिए, तो दोनों एक जैसी होंगी क्या। तो जो लिखेगा हमारे बारे में वो अपनी वासना अपनी इच्छाएं उसमें डाल देगा। तो मेरा जीवन महात्माओं से भरा है, तो जो मैं बोलूंगा वो ज्यादा अच्छा है। तो महाराज जी ने एक एक संस्मरण जिस महात्मा के पास गए और

0: हमारे डालमिया जी शायद थोड़ा विलंब हो गया, उनको नहीं आ सके अभी, तो मैं गिरीश भाई से कहूंगा अपने ट्रस्ट की ओर से महाराज जी के चरणों में अपने भाव समर्पित करेंगे। श्री गिरीश भाई।
1: हरिओम। कल ही एक सुपरस्टार की देहांत हुई, उनके शब्द थे, आनंद मरता नहीं, आनंद मरा नहीं। और प्रतिवर्ष 101 वर्ष तक की आनंद जयंती हमारे हृदय में ऐसे बसी हुई है कि ऐसे लगता है कि महाराज जी संपूर्ण रूप से हमारे बीच में ही है और हमें आनंद के हसगुल्ला यहाँ तो वह हमारे सामने संत लोग हैं, बहुत ही सुंदर बातें प्रस्तुत करेंगे जिससे हम लोग आनंद के हसगुल्ला में डूब जाएंगे। तो ऐसी सुंदर बातें हमारे बीच में आ रही है। कभी कभी लगता है सत्संग में बैठ के कि हमारे रोम रोम में कुछ हो रहा है, इतनी वेद की वाणी सुनते हैं, इतनी ज्ञान सुनते हैं, जहां भी हाथ लगावे लगता है कि कुछ यहां गूंज रहा है, कुछ यहां गूंज रहा है, कहां यूं। तो प्रत्येक शरीर के अंदर हम एक रोमांच महसूस करते हैं कि ज्ञान जो सत्संग में आज 30-30, 40-40, 50-50 साल के जो श्रोता है या हमारे जैसे कोई नए खिलाड़ी भी है मगर बराबर यहां आते हैं, तो उसके रोम रोम में यह महसूस होता है। मगर पता नहीं क्यों जब हृदय पर हाथ लगाते हैं तो ऐसा कोई चमत्कार महसूस नहीं होता है, क्यों नहीं हो रहा है। एक बहुत ही आनंद की बात है, तो एक छोटा सा चुटकुला है। एक आदमी डॉक्टर के पास गया कि भाई साहब हमारे तकलीफ यह है कि जहां मैं उंगली रखता हूं वहां दर्द होता है, तो उसका कारण क्या। तो डॉक्टर ने कहा कि भाई अभी तो ऐसा है कि आपके पूरे शरीर का हमें एक्सरे लेना पड़ेगा तभी पता चलेगा क्यों ऐसा हो रहा है। एक्सरे लिया गया, दूसरे दिन वह वहां पहुंचा, फिर उसने पूछा कि भाई क्यों ऐसा हो रहा है। तो उसने कहा कि भाई देखिए आपके अंगुली में ही फ्रैक्चर है, जहां भी आपकी अंगुली पहुंचती है वहां दर्द महसूस होगा ही होगा। तो यह ऐसी हम जीवन में भी महसूस करते हैं कि यहां क्यों हमें रोमांच नहीं होता। तो अपनी जो अंगुली, कल प्रत्येक बोधानंद जी ने बहुत ही सुंदर इससे अंगुली की पूरी चर्चा की हमारे बीच में, बहुत ही अद्भुत चर्चा थी, हम सुनते भी है मगर वापस स्मरण भी हो गया और उनकी जो वाणी है उससे हम पवित्र भी हुए कि जो हमारी पांच उंगली है उसके महत्व क्या है। तो ऐसी सुंदर बातें हम हमेशा संतों से सुनते हैं। आप सबसे निवेदन है कि प्रातः प्रवचन, स्वाध्याय प्रवचन, सायं गीता चिंतन माला, ऐसे सुंदर प्रसंग है कि संत हमेशा उपस्थित रहते हैं। जो अखाना जी महाराज का प्रातः 7:15 से 7:30 प्रवचन होता है, रविवार को 4:30 से 5:30 तक वीसीडी पे उनके दर्शन एवं प्रवचन होते हैं, विपुल में भी रविवार को उनके दर्शन और प्रवचन का लाभ मिलता है। तो अखंडानंद जी महाराज तो हमारे रोम रोम में है ही है, खाली एक अंगुली पहुंचनी चाहिए, पता नहीं कब यह फ्रैक्चर हमें दिखाई दे। आप सबसे फिर से वंदन करते हुए, संतों को वंदन करते हुए, हरिओम।
0: गिरीश भाई ने बहुत सुंदर बात कही, वो दर्द जहां उंगली रखते हैं वहां नहीं है, दर्द अपनी उंगली का ही है। हम लोग अपने को ठीक करेंगे तो सब जगह आनंद की अनुभूति होने लग जाएगी, बाहर को ठीक करने से कुछ होगा नहीं। भले वो कोई भी दृष्टांत था लेकिन भाव बड़ा सुंदर था। अब हमारे मंच में सब विराजमान संत महापुरुषों का कार्यक्रम प्रारंभ होगा। हम लोग काफी संख्या में उपस्थित हैं संत लोग, इसलिए हम समय को थोड़ा व्यवस्थित करके 10-10 मिनट में हमारे स्वामी प्रत्येक बोधानंद जी और अध्यक्ष जी, इनको तो समय की छूट है, बाकी हम लोग 10-10 मिनट में अपने भाव व्यक्त करेंगे। सर्वप्रथम श्री श्रीनिवास जी पाठक मानस के माध्यम से पूज्य गुरुदेव को लेकर के कुछ आनंदमयी चर्चा करेंगे।

0: श्रीनिवास जी पाठक अब विराजिए, माइक वहीं आ जाएगा।
1: श्री माता रामो मत पिता रामचंद्र स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र सर्वस्व मे रामचंद्रो दयारुण। बोलिए श्री गुरुदेव भगवान की। भगवान नाम ले लें एक क्षण।

पूज्य स्वामी श्री प्रेमपुरी जी महाराज। सभी संतों के चरणों में सादर नमन करते हुए एक छोटी सी बात आपको रामायण की ही है। शबरी के आश्रम पर राम जी आए। जब शबरी के आश्रम पर राम जी पधारे और शबरी ने देखा उनको, तो वहां एक ऐसी बात तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, बोले शबरी देखी राम गृह आए। शबरी ने देखा कि राम जी आ गए मेरे यहां। किसका स्मरण हुआ?

श्री सबरी माता ने गुरुदेव के वचनों का स्मरण किया और श्री गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमन किया। भगवान भी पधारे हैं तो ये श्री गुरुदेव के वचन का प्रभाव है। हमारे आचार्य जी ने और हमारे गिरीश भाई जी ने, मधु भाई ने तो बहुत बहुत बड़ी बात कही बचपन की। कुछ ही लोग दिखाई देते हैं अब, महाराज श्री जी के समय के श्रोताओं में, गिरीश भाई उस समय रहे होंगे श्रोता, बहुत बहुत छोटे रहे होंगे, हरि भाई जी संभालते थे, मधु भाई थे, चिवन भाई थे, बहुत कम श्रोता हैं महाराज श्री जी के समय के, हम सबका नाम नहीं ले पा रहे। तो बात यह है कि गुरु के वचन पर हमारा जितना अधिक विश्वास होगा उतना ही हमारा कल्याण होगा। महाराज श्री जी पूरे विश्व के एक ऐसे महापुरुष, हम लोग तो बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हम उनके समय में ये शरीर था और बाद में भी उनके साहित्य का और उनके स्मरण का हम लोगों को अवसर मिलता है। ऐसे महाराज श्री जी के वाक्यों का, महाराज श्री जी के वचनों का, महाराज श्री जी के जो विचार हैं उनका जितना हम स्मरण करेंगे उतना ही हम भगवत समीप होते जाएंगे। इस बात को हम लोग स्मरण रखें और सदैव सत्संग से जुड़े रहें। हमारे गिरीश भाई ने अपने वक्तव्य में, अपने प्रवचन में ये सत्संग का प्रचार कर दिया कि भैया सत्संग में आते रहना तो आनंद जयंती में आए, और सत्संग में नहीं आए तो आनंद जयंती में आए नहीं आए बराबर। हमारे गिरीश भाई को बार बार साधुवाद, धन्यवाद।

0: इसी प्रेमपुरी आश्रम में महाराज श्री की कृपा हमारे ऊपर हुई थी। ये स्वरूपानंद जी महाराज उस समय महाराज जी की सेवा में थे। पांचवें माले पे महाराज जी ने हमारे ऊपर विशेष कृपा की थी। स्वामी श्री गोविंदानंद जी महाराज, स्वामी श्री प्रबोधानंद जी महाराज, इन सबका सानिध्य था। और स्वामी श्री विमलानंद जी महाराज, सभी के चरणों में बारम्बार नमन। और पूज्य चरण श्री स्वामी श्री गिरीशानंद जी महाराज को हम बार बार साधुवाद, धन्यवाद तो इन्हें क्या देंगे, साधुवाद ही देंगे कि जिन्होंने आनंद जयंती का दो बार स्मरण करा के, कल तो हमारी स्थिति हो गई थी जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे, पर उन्होंने उनको बल दिया कि नहीं आना है आओ, तो इनकी कृपा से, महाराज श्री जी कृपा से यहाँ आपका दर्शन हो गया। बोलिए श्री गुरुदेव भगवान की। समय का ध्यान रखते हुए महाराज जी
1: बोले, सद्गुरुदेव भगवान की। हमारे पाठक जी ने बहुत ही मधुर वाणी में और शबरी के प्रसंग के माध्यम से आनंद जीवन में कैसे प्रकट होता है ये हम लोगों को श्रवण कराया। पाठक जी की वाणी और भाव दोनों ही आनंदमय थे। अब हम सभी लोग, हमारे मध्य में विराजमान स्वामी श्री हरितीर्थ जी महाराज, जो बड़े सहज संत हैं और स्वाभाविक ही महाराज जी को उत्सव में पधारते हैं, उनसे भी मैं निवेदन करूंगा अपने भाव समय की सीमा में महाराज जी के चरणों में रखें। श्री स्वामी हरितीर्थ जी महाराज।
2: सभा सरस्वती नमः। मैं पहली बार यहां बोल रहा हूं।
3: ओम नमः शिवाय। यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियोस, 24/7 स्पिरिचुअल चैनल्स फ्रॉम शैवम.org। ओम नमः शिवाय।
4: ओम नमः शिवाय। Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Kathopanishad, presented by Swami Sri Pranavanandaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
2: Paramashuddhaya Pratasmaraniyo Prempuri Ashram Ke Adishthata अनंत श्री विभूषित महामंडलेश्वर श्री स्वामी प्रेमपुरी जी महाराज तथा क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ अनंत श्री विभूषित परम श्रद्धेय परम आदरणीय महाराज श्री समस्त आत्मस्वरूप श्रोता जन साधक जन, बड़े ही सौभाग्य से हम लोग दैनिक सत्संग में विराजित हैं। कठोपनिषद के अंतर्गत आप प्रवचन श्रवण कर रहे हैं। मानवीय जीवन में बहुविधता, अनेक विधता, ये मानवीय स्वभावों में से एक है। बहुत सारे मनुष्य हैं और उन मनुष्यों में मनुष्यत्व एक है। मनुष्य नाम एक है, प्रवृत्तियां एक हैं, बहुत सारी चीजें एक हैं, लेकिन मनुष्य के स्वभाव में विभिन्नता है। हम आदमी जैसे मालूम पड़ते हैं, एक जैसे मालूम पड़ते हैं, लेकिन हमारा जो स्वभाव है वो बिल्कुल अलग अलग है। और उन स्वभावों के अनुसार हमारा जीवन चलता है। आप देखेंगे एक जैसा दूसरा गुरु आपको नहीं मिलेगा, एक जैसा संत आपको नहीं मिलेगा, एक जैसा बोलने वाला आपको नहीं मिलेगा, और एक जैसा नहीं बोलने वाला भी नहीं मिलेगा। बोलने वाले भी अलग अलग, बोलने के तरीके अलग अलग। और कोई नहीं भी बोलता है ना, तो नहीं बोलना भी हर आदमी का अलग है। ऐसे ही बहुत सारे पुत्र हैं, बहुत सारे शिष्य हैं, वे बिल्कुल अलग अलग हैं। हजारों शिष्य हैं, हजारों पुत्र हैं, लेकिन उनके भी स्वभाव में, प्रवृत्तियों में अंतर है। और आज बालक नचिकेता यही दिखाना चाह रहे हैं। सामान्य रूप से तीन पुत्रों का, तीन शिष्यों का वो उल्लेख करते हैं। जो प्रथम कोटि का पुत्र है, एक नंबर का, वो पिता के मन की बात को जानकर अनुकरण कर लेता है। उसको कहना नहीं पड़ता है, शब्द से आप ये करो ये कहना नहीं पड़ता है, मन में आई हुई बात को समझ लेता है, वो चेष्टा को समझ लेता है, इशारे को समझ लेता है। और ये इशारे को समझना, ये बहुत बुद्धिमत्ता की बात है। शब्द समझने का माध्यम है और वहां स्पष्टता है, लेकिन आप केवल इशारे को समझ रहे हैं, ये श्रोता की, समझने वाले की बहुत बुद्धिमत्ता है। एक नंबर का पुत्र अथवा एक नंबर का जो शिष्य होता है, वो मन की बात को ताड़कर, समझकर जीवन में अनुकरण में लाता है। और दूसरे नंबर का जो शिष्य है, उसको कहना पड़ता है, इशारा नहीं समझता है वो, मन की बात भी समझ में नहीं आती है, आपको कहना पड़ता है, और कहने के बाद फिर श्रद्धापूर्वक उसका अनुकरण करता है। श्रद्धा माने वहां बिल्कुल किसी भी प्रकार हिचक नहीं, कोई दुख नहीं, अपनी कोई वासना नहीं, हाथ जोड़कर सर्वस्वीकृति है। ये दूसरे नंबर का पुत्र है। और तीसरे नंबर का पुत्र है, संकेत को भी नहीं समझता है, कहने के बाद करता तो जरूर है, लेकिन उतनी श्रद्धा नहीं है। चलो ठीक है, पिता की आज्ञा है, वहां कर्तव्य नहीं है, वहां मजबूरी की तरह, लेकिन टालता नहीं है, आप ध्यान देना, टालता नहीं, वो करेगा जरूर, गुरु की आज्ञा का पालन करेगा। पुत्र होगा तो पिता की आज्ञा का पालन करेगा, लेकिन वहां पर श्रद्धा नहीं होगी, कहा इसलिए करना है। और इसको तीसरे नंबर पर रखा गया है। लेकिन जो चौथा है ना, जो कहने के बाद भी पिता की आज्ञा का उल्लंघन करता है, उसको शास्त्र पुत्र में गिनता ही नहीं है। शास्त्र कहता है कि वो पुत्र नहीं है, उसका नाम पुत्र है, लेकिन पुत्र के कोई गुणधर्म, पुत्र की कहीं कोई परिभाषा उसके जीवन में नहीं है। ये चौथे के बारे में महात्मा लोग एक दृष्टांत सुनाते हैं, बड़ा मजेदार। एक बड़ा गुरुकुल था और उस गुरुकुल में बहुत से विद्यार्थी रहते थे, अध्ययन होता था। उनमें बहुत सारे शिष्य थे जो अपने गुरु की आज्ञा का पालन करते, सच्चे शिष्य थे, और कुछ ऐसे भी थे कि जो टालने वाले थे। एक बार गुरु ने आदेश दिया अपने शिष्य को, अब ये श्रावण का महीना है, बड़ा सुंदर, और मैं शालिग्राम भगवान का पूजन करना चाहता हूं, और प्रतिदिन मुझे तुलसी की मंजरियां चाहिए, मुझे तुलसी दल चाहिए, और इस वन में, इस जंगल में जहां पर भी तुलसी के पौधे होंगे, वहां से आप इसको जुटा के ले आओ। लेकिन शिष्य लोग जानते थे बहुत दूर है तुलसी, और पूरा श्रावण मास बारिश कीचड़ जंगलों में घूम के लाना पड़ेगा। टालने का एक बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र है, आपको टालना होना तो आप जब कोई बात बोले तो आप अनजान बन जाइए। आप जैसे मान लो कि आपको किसी ने बोला कि दवा ले आई, तो आप बोले मेडिकल कहाँ है, आपको मालूम है, लेकिन बोले मालूम कहाँ है, मालूम नहीं मेडिकल है। जब आपको मेडिकल ही मालूम नहीं तो बात खत्म हो जाती बात। ऐसे शिष्य बड़े मजेदार थे, वो अनजान बन करके गुरु को कहने लगे, गुरुदेव बोले तुलसी क्या होती है। दूसरे ने कहा कि अरे बोले इतना इतना पत्ता होता है ना, वही ना। तीसरे ने कहा कि नहीं यार इतने इतने फल आते हैं उसमें वो। चौथे ने कहा कि बहुत बड़ा पेड़ होता है, उसके नीचे गाय भैंस बैठी रहती है, वही। अनेकों प्रकार की जानबूझ करके कल्पना कर रहे थे। गुरु ने कहा कि शायद तुमको मालूम नहीं है, चलो मैं ले आता हूं। गुरु ही गए जंगल में, लाए एक दिन दो दिन तीन दिन, और शिष्य लोग तो बड़े प्रसन्न हुए। जिसको भी बोलते भैया तुलसी दल लाओगे, बोलते गुरुदेव क्या है तुलसी दल, पता है कुछ भी पता नहीं। एक दिन शिष्य गुरु समझ गए कि ये सेवा करना नहीं चाहते हैं, चलो आज मैं इनको दिखा देता हूं कि सेवा क्या होती है। सभी शिष्यों को बुलाया और उन्होंने पूछा कि भैया अब तो मैं बूढ़ा हो चला हूं, और इतना दूर वन में जा करके मुझे तुलसी पत्र लाना पड़ता है, और तुम लोग ला नहीं पाते हो, और मैं चाहता हूं कि तुम लोग जा करके तुलसी पत्र ले आओ। शिष्यों ने कहा गुरुदेव तुलसी पत्र ही मालूम नहीं क्या होता है, तुलसी का पत्ता तुलसी दल क्या है ये, और कहां पर पौधा है ये भी मालूम नहीं, उसकी पहचान भी नहीं है। गुरु ने कहा मुझे मालूम है ना, तो एक काम करते हैं, मैं ही वन में चलूंगा आज भी, तुम लोग मत जाओ, मैं भी चलूंगा, लेकिन मैं तो पैदल नहीं चल सकता हूं, और तुम लोग पालकी लाओ पालकी, और पालकी में मैं बैठूंगा और तुम मुझे ले चलो, और जहां तुलसी दल होगा वहां तुमको मैं बता दूंगा। गुरु जी ने मंगाई पालकी, बोले उठाओ पालकी को, उठा लिया कंधे पर लेके चलने लगे। अब आप सोचो तुलसी दल कितना दूर होगा, अरे वहीं था, वो आश्रम के बाहर ही था तुलसी दल, और उस तुलसी के वन से होके जाने लगे। शिष्यों ने कहा यही तो है तुलसी, लेकिन कौन बोलेगा गुरु को ये है, क्योंकि अभी तक तो हमने यही बोला है कि तुलसी हमको पता ही नहीं। तुलसी दल वो तुलसी का वन लांग करके आगे जाने लगे। शिष्यों ने कहा ये क्या बात है, तुलसी के वन से होके जा रहे हैं और गुरुदेव नहीं बोल रहे कि तुलसी है। शिष्यों ने इशारा किया, गुरु ने कहा बेटा ये तुलसी यहां नहीं, अगले वन में है। अगले वन में गए, वहां भी तुलसी। अब आपस में शिष्य कहने लगे कंधा दर्द कर रहा है, तुलसी तो यही है। और वो बोले गुरुदेव कहां है तुलसी। गुरु ने कहा अगले वन में, चलो बेटा अगले वन में है, अगले वन में है। घुमाते रहे, शिष्य थक गए हार गए, और एक तुलसी के पौधों के सामने गुरु के पालकी को रखा और कहा गुरुदेव यही तो तुलसी, कहा घुमा रहे हो, समझ गए कि नहीं बात। ये चौथे नंबर का शिष्य समझना, माने गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करना, टाल मटोल करना, सेवा की दिशा बदल देना, इसको कहते चौथे नंबर का। और जो चौथा नंबर है ना वो नाम का पुत्र है। शास्त्र कहता है कि पुत्र के कोई लक्षण उनमें नहीं है। आज बालक नचिकेता कहते हैं कि बहु नामीति प्रथमः, मैं पुत्रों में अथवा शिष्यों में कर्तव्य के रूप में मैं सर्वप्रथम रहता हूं मैं, और कहीं कहीं मैं दूसरे नंबर पर रहता हूं, सेवा में कहीं कहीं दूसरे नंबर, और तीसरे नंबर पर तो कहीं रहता ही नहीं हूं। और मेरे पिताजी ने कहा है मृत्वे त्वाम ददामी, तुमको मैं मृत्यु को दान देता हूं, तो ऐसा किम स्वित यमस्य कर्तव्यम तन्मयाद्य करिष्यति। मेरे पिता ने कहा कि तुमको मैं मृत्यु को दान देता हूं, तो ऐसा कौन सा कर्तव्य होगा यम का जो मेरे द्वारा करना चाहते हैं। अब यहां बालक नचिकेता की कितनी ऊंची प्रतिभा है, अब आप ध्यान दे के सुनेंगे, वो सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। आज बालक नचिकेता अपने इतिहास से वो शिक्षा ले रहे हैं, अपने पूर्वजों से शिक्षा ले रहे हैं। अनुपश्य यथा पूर्वे, अनुपश्य तथा परे, सस्यमिव मर्त्यः पच्यते सस्यामिवा जायते पुनः। वो अपने अतीत को देख रहे हैं और वो अपने भविष्य को भी देख रहे हैं। अतीत को क्या देख रहे हैं, उनके सामने आदर्श हैं राम, उनके सामने आदर्श शिवी, बड़े बड़े जो राजा महाराजा ऋषि महर्षि अपने पूर्वज, उनके सामने आदर्श हैं। आज राम, भगवान राम ने एक वचन पिता का सुना भी नहीं। उनको मालूम पड़ा कि ऐसा वचन पिताश्री ने मां को दिया है, बस इतना ही सुना था, और मां मांग रही है। वहां राजा दशरथ ने जाके आदेश थोड़ी दिया कि तुम वन में चले जाओ। ये प्रथम कोटि के पुत्र हैं, भगवान श्रीराम प्रथम कोटि के पुत्र हैं। भगवान राम को कहना नहीं पड़ा, सूचना दूसरे से मिली, दूसरे से परिस्थितियों को जाना, और उसके बाद फिर निकल पड़े। बस पिता को तो प्रणाम करने के लिए गए थे भगवान श्रीराम, पिता को तो प्रणाम करने के लिए। बोले इसमें क्या है, मां की आज्ञा है, पिता की आज्ञा, एक ही बात तो है। बोले राम राजा बने या भरत, देखो वासना गुरु की आज्ञा में सबसे बड़ा प्रतिबंध है। एक तरफ हमारी वासना बोलती है और दूसरे तरफ गुरु के आदेश बोलते हैं, अनुकरण किसका करेंगे। एक तरफ हमारी वासना बोलती है ऐसा नहीं करो, इसमें दुख है, राज्य को छोड़कर वन में जाना बड़ा कष्ट है, भोग की वासना है, कष्ट से भय, वन में जाएंगे काटे गड़ेंगे, कोई सुविधा नहीं, वहां अनेकों प्रकार के दुख हैं, विषाद हैं, और यहां सम्मान सुख सुविधा राज्य सब कुछ है हमारी वासना। और दूसरी तरफ कर्तव्य नीति धर्म पिता के वचन। अब यहां हम अपनी वासना को मानेंगे कि गुरु की आज्ञा को मानेंगे। यदि हमारी वासना यदि प्रबल हो ना, तो वासना की आंधी में गुरु के आदेश बह जाते हैं, वासना के आंधी में शास्त्र के वचन उड़ जाते हैं, और उसके बाद फिर हम वासना में पड़ जाते हैं। लेकिन भगवान श्री राम ऐसे महान पुत्र हैं और वहां स्वयं की वासना का कोई मूल्य नहीं है, स्वयं की इच्छा का कोई मूल्य नहीं, पिता की आज्ञा ही सर्वोपरि। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं बालक नचिकेता के सामने, इसीलिए बालक नचिकेता इतिहास को अपने सामने रख रहे हैं। अनुपश्य यथा पूर्वे, वो देख रहे हैं हमारे पूर्वज, पूर्वजों का आदर्श, और उस आदर्श की परंपरा हमको आगे बढ़ाना है। अब हमारे गिरिजी को देखते हैं कि नहीं, तो अपने को लगता है कि नहीं वो परंपरा का पालन कर रहे हैं। जैसे इनके पिताजी ने बहुत बहुत अपने धर्म का काम किया, आज भी साधु महात्मा आज भी पूछते हैं प्रेमपुरी, अरे अरे बच्चू भाई वाला ऐसा बोलते हैं। जब मैं इंदौर में ऐसी कभी चर्चा होती है यहां की महात्माओं के पास बैठ के, तो वहां एक व्यास जी थे गीता भवन, और यहां बच्चू भाई, आज भी लोग याद करते, आहा बोले क्या संतों के प्रति आदर, क्या विनय, वो क्या बुद्धिमत्ता, और वो कैसे कैसे साधु महात्माओं को ढूंढ के लाने की प्रवृत्ति। और एक किसी महात्मा ने बोला, अरे बोले वो साधुओं की पहचान थी उनमें, सबसे बड़ी बात बोले साधुओं की

0: पहचान थी, वो विद्वान कौन सा महात्मा, वो कैसा तपस्वी, कैसा, वो जानते थे, वो कला थी उसमें। तो आपको ये सारी चीजें विरासत में मिली हैं और आज उस विरासत को आगे बढ़ाना है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। अरे पुत्र की विरासत तो कोई भी मनुष्य मनुष्य को पैदा कर देता है, मनुष्य मनुष्य को पैदा करता है, जाने अनजाने उसको मालूम थोड़ी है, लेकिन मनुष्यता पैदा करनी पड़ती है, धर्म नैतिकता चरित्र इतिहास पैदा करना पड़ता है, ये पुरुषार्थ है। पिता ने हमको शरीर दिया है, लेकिन जो परंपरा, उनकी जो परंपरा है, उनका जो धर्म नैतिकता चरित्र यश श्री, ये सब कुछ अपने को आगे बढ़ाना है। आज बालक नचिकेता यही तो सोच रहे हैं, अनुपश्य यथा पूर्वे, बोले हमारी महान विरासत है और इस विरासत को मैं आगे बढ़ाऊंगा। पिता की आज्ञा का पालन करना, पिता के आदर्शों को आगे बढ़ाना, पिता के नाम को और आगे बढ़ाना, धर्म को आगे बढ़ाना। और यदि मैं पिता की आज्ञा का उल्लंघन करता हूं तो फिर मेरी किसमें गिनती होगी, अब ये भी तो बात है ना। यदि मैं पिता की आज्ञा का पालन करता हूं, और सही सही आज्ञा, अच्छी अच्छी आज्ञा तो कोई भी पालन कर ले। अच्छा मान लो कि आपको रसगुल्ले पसंद है और आपके पिता ने बोला कि लो बेटा ये रसगुल्ला खाओ, पिताश्री आपकी आज्ञा, चट से खा लिया, आपका पेट नहीं भरा है, बोले बेटा और एक रसगुल्ला खाओ, ओ पिताजी आपकी आज्ञा। लेकिन पिताजी ने बोला थोड़ा बेटा ये कांटे पर चलो, आप रसगुल्ला खाए हो, आप इसको थोड़ा पचाना है, थोड़ा कांटे पर चलो, कांटे पर थोड़ा खून निकल आए, कांटे कट जाए, तब आप क्या बोलोगे? तब आप बोलेंगे क्या, पिताश्री आपकी आज्ञा? नहीं नहीं, उस समय आप बोलेंगे नहीं, आपके अंदर की जो असहिष्णुता है वो बाहर आएगी। अच्छी अच्छी आज्ञा का पालन तो सब करते हैं, सुखद आज्ञा का पालन करना सरल है, लेकिन जिसमें दुख छुपा हो वो पालन करना बहुत कठिन है। आज बालक नचिकेता सोचते हैं कि यदि मैं ये बात नहीं माना तो क्या फिर मेरा बेटा होना व्यर्थ है, और जो परंपरा उज्जवल परंपरा मेरी और जो मेरी अगली पीढ़ी आएगी तो क्या होगा। अनुपश्य तथा परे, बालक नचिकेता दोनों तरफ देख रहे हैं, प्राचीन जो अपनी विरासत उसको भी देख रहे हैं और जो आने वाली पीढ़ी होगी वो मुझे क्या बोलेगी, मुझे क्या बोलेगी। जब लोग अपना परिचय देंगे मेरे पीढ़ी के, तो फिर अपना परिचय क्या देंगे, अपने पूर्वज कैसे थे। अरे यही कि अब उन्होंने, मेरे पिताजी ने अपने पिता की आज्ञा का पालन नहीं किया, वो पितृहंता थे, पिता की आज्ञा का उल्लंघन करने वाले थे, बोले वो क्या आदर्श मिलेगा। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण गीताजी में बोलते, यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्तदेवी तरो जनाः सयत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। आप जो अपने जीवन में आचरण करते हैं ना, वो दूसरे के लिए अनुकरण बन जाता है, आपके पुत्रों के लिए, आपके मित्रों के लिए, आपके आसपास के लोग आपको देख करके आपसे सीख लेते हैं। कभी आप देखना, आप माला लेके बैठते ना, तो माला लेके सामने वाले को लगता है यार मुझे भी लेके बैठना चाहिए। जब आप ध्यान करते हैं तो बगल वाले को लगता है कि मुझे भी ध्यान करना चाहिए। ये संघ का प्रभाव, संघ का। आप क्रिकेट देखते हो तो ऐसा लगता है कि नहीं सचिन तेंदुलकर होते तो अच्छा था, और आप लता को सुनते हैं तो क्या लगता है, अरे थोड़ा गायक हो तो अच्छा होता। किसी अब राजनेताओं को देख के तो लगता है नहीं आदमी को कि हम राजनेता बनते तो अच्छा होता। आदर्श खत्म हो गया। अब थोड़ा अन्ना हजारे को देख के लगता है कि नहीं काश हम भी थोड़ा सा अनशन कर लेते। तो आपको, आपके ऊपर संघ का प्रभाव पड़ता है, संघ का प्रभाव। आपका जो चरित्र है वो आपके आसपास के आदमी पर आलोकित हो जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं, यद्यदा चरति श्रेष्ठः तत्तदेवे तरो जनाः। इतरो जनाः, इतर जो जन है उसका अनुकरण करते हैं। और प्रमाणम इति कुरुते, ऐसा भगवान बड़े सुंदर बात बोल रहे हैं ना, शास्त्र की व्याख्या, भगवान प्रमाण प्रस्तुत कर रहे हैं। प्रमाणम इति कुरुते, ऐसा ये प्रमाण है, माने हमारे पिता ने ये किया इसलिए हमारे लिए प्रमाण है। प्रमाण प्रमाण माने प्रामाणिक है, ये चीजें आचरण सिद्धांत को प्रामाणिक बना देता है, इसलिए आचरण हमारे जीवन में बहुत आवश्यक है। ये कुमारिल भट्ट का वचन है, आचारात तो स्मृति ज्ञातवा श्रुतिर विज्ञायते तथा। जब शास्त्र के ऊपर विचार करने लगे तो विचार करते समय लोगों ने पूछा कुमारिल भट्ट को कि इसमें तो शास्त्र प्रमाण है ही नहीं, कहीं ढूंढा कोई एक सिद्धांत था, बोले इसमें तो कोई प्रमाण ही नहीं है। उन्होंने कहा भैया नहीं, शास्त्र प्रमाण ढूंढने की एक विधि है, और उन्होंने विधि बता दी आपको, आचारात तो श्रुतिम ज्ञातवा, स्मृतिम ज्ञातवा। आप महापुरुषों का आचरण देखो, और आचरण देखने के बाद ये इस श्रुति पर विचार किया गया था, ये मंगलाचरण की श्रुति। वेद में कहीं भी ऐसा वचन नहीं है कि तुम मंगलाचरण करो, वेद में कोई वचन नहीं है। तो शास्त्रकार बैठ के विचार करने लगे, मंगलाचरण तो सब करते हैं लेकिन शास्त्र में कोई प्रमाण नहीं, शास्त्र कभी कहीं बोलता नहीं वेद में। तो उन्होंने कहा कि नहीं, एक नियम हम बना लेते हैं, क्या महापुरुषों का जीवन हम देख लेंगे, हम अपने गुरुओं का जीवन देख लेंगे, और हम अनुमान करेंगे कि भैया इसके मूल में कोई ना कोई तथ्य होना चाहिए। हमारे गुरुजन प्रणाम करते हैं, है ना, जहां भी जाते प्रणाम करते हैं। तो उन्होंने फिर आचार से स्मृति की कल्पना की, ओ इसका कोई स्मृति वचन है, स्मृति वचन तो है, और स्मृति वचन स्मृतियां तो बहुत है, वेद की बात थी, और स्मृति वचन को देख करके फिर कल्पना की ऐसी ही कहीं श्रुतियां रही होगी, अभी भले नष्ट है। तो आचरण कोई सामान्य चीज थोड़ी है, आचरण ही तो परम धर्म है, हमारे धर्म को सजीव बनाने वाली कोई चीज है तो वो आचरण है। आचरण धर्म को सजीव बनाता है, आप ध्यान देना, धर्म को सजीव बनाता है। यदि आचरण ना हो तो आपका सिद्धांत निर्जीव है। आचरण, अब मान लो आपके जीवन में क्षमा, क्षमा है ना, ये कोई बात है, क्षमाशील व्यक्ति ही ना हो तो आप क्षमा को कैसे समझेंगे। दुनिया में अहिंसा ही जीवन में ना हो तो आप कैसे समझेंगे अहिंसा का मतलब क्या है। इसलिए सत्य, दया, करुणा, पितृवचन, आज्ञाकारिता, ये सारे जो गुणधर्म है ये आचरण में जब आ जाते हैं तो वे सजीव हो जाते हैं। धर्म को सजीव बनाने वाली कोई चीज है तो वो आचरण है, और आचरण की भाषा ही दूसरे लोग समझते हैं। आप बोल के समझाओ ना वो बात, आपके बच्चे ज्यादा नहीं समझते हैं। आप जैसे अपने बच्चों को मंदिर में ले जाते हो, और मंदिर में ले जाने के बाद आप क्या करते हो, बच्चे की गर्दन पकड़ करके भगवान के सामने झुका देते हैं। महात्मा के सामने अपने बच्चों की गर्दन पकड़ के पोते की झुकाती कि नहीं, लेकिन वो तरीका नहीं है। आप मंदिर में साधु महात्मा के सामने ले जाओ बच्चे को और स्वयं प्रणाम करो, आप उसको बोलो केवल बेटा प्रणाम करो, आप करो, वो देखता रहेगा, वो आपको देखेगा, एक दिन दो दिन देखेगा, और उसके बाद फिर वो समझ लेगा हाँ ये तो बहुत अच्छी चीज है, झुको, उसको भी मजा आएगा। और आप गर्दन पकड़ के झुकाओगे ना, वो समझ लेगा कि ये बहुत खतरनाक चीज है, और जैसे ही साधु के सामने आएगा सोचेगा अब मेरी गर्दन दबाएंगे लोग, और वो दूर से डरता है फिर साधु के पास आने में, लगता है कि अब ये गर्दन दबाने वाली। आचरण ये सर्वश्रेष्ठ चीज है, और इसीलिए बालक नचिकेता अनुपश्य तथा परे, वर्तमान का जीवन आने वाली पीढ़ी के लिए आदर्श बने, ये बात भी बालक नचिकेता में, ये जो श्लोक है ना बहुत गंभीर श्लोक है ये, अनुपश्य यथा पूर्वे अनुपश्य तथा परे।
1: ओम नमः शिवाय।
2: यू आर लिसनिंग टू shaivam.org रेडियो, the 24/7 spiritual channel from shaivam.org.